0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है। संत नमस्कार आपको करुणा जी।
2: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। युवाओं के बीच नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि NISS प्रोग्राम फिर से शुरू किया जा रहा है। मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को दोबारा पोर्टवी बंदरगाह की ओर आकर्षित करने के वास्ते विदेशी मछलीमार जहाज़ों के फिश होल्स में फिर से बंकर ईंधन रखने की अनुमति दी जाएगी। मॉरिशस में इबोला के खतरों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के कदम 3 महीनों यानी कि 7 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। मेडन कप के लिए आज शॉन रेमोस पूरी तरह से तैयार। 2400 मीटर की दूरी वाली ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस सीजन की सबसे लंबी दौड़ है, जिसमें जबरदस्त रोमांच देखने की उम्मीद है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष वार्ताकारों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय हुई जब यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तेज किए गए हैं और होमोज में अमेरिका तथा ईरान के बीच नए सिरे से तनाव, दोनों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमला करने का किया दावा। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले कुछ बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर में बादल घिर आएंगे और पश्चिम में जहां तहां बारिश हो सकती है, अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:14 पर, सूर्यास्त होगा 6:02 पर।
3: You're listening to RM3 Radio, Mana.

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे को पकड़ कर फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या रास्ता चलने वाले मुसाफिर हो। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करो और जब सुबह हो जाए तो शाम का। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, इंतज़ार न करो और अपनी सेहत से बीमारी के लिए और अपनी ज़िंदगी से मौत के लिए फ़ायदा उठाओ। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की आर्जी हकीकत को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। एक मुसाफिर किसी जगह हमेशा के लिए नहीं ठहरता बल्कि अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करता रहता है। इसी तरह मोमिन को ये समझना चाहिए कि दुनिया उसकी दायमी मंजिल नहीं बल्कि आखिरत की तरफ सफ़र का एक मरहला है। इंसान को माल, मकान, ओहदा और दुनियावी आसाइशों में इस कदर मशगूल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी असल मंजिल यानि आखिरत को भूल जाए। इस हदीस में ये भी तालीम दी गई है कि सेहत, जवानी, वक्त और ज़िंदगी को नेक आमाल में इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों

मोहतरम सामीन, दुनिया एक आर्जी मकाम है और एक दिन हम सब को इस दुनिया से रुखसत होना है। हमें दुनिया की तालीम, रोज़गार, कारोबार और ख़ानदान की जिम्मेदारियों को ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला और आखिरत को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने माल को नेकी के कामों में खर्च करना चाहिए, अपनी ज़बान को झूठ और गीबत से बचाना चाहिए और अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर दिन को इस तरह गुजारें जैसे ये हमारी ज़िंदगी का एक कीमती मौका हो। नमाज, कुरान, ज़िक्र, सदका और अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखिए कि दुनिया का सामान यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे नेक और बुरे आमाल हमारे साथ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया की मोहब्बत में हद से बढ़ने से बचाए और आखिरत की कामयाबी के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबा खैर के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में

0: श्री कृष्ण
1: गोकुड़िया नी गाय बोले कुंज कुंज मन मन बोले
0: जय श्री कृष्ण
1: ब्रजभूमि नारायण बोले राज राम सी गोपी बोले
0: जय श्री कृष्ण
1: धेनु चराता गोप बोले बाजाने तबला मा बोले
0: जय श्री कृष्ण
1: शरणाई ने तंबुर मा बोले नृत्य करती नारी बोले
0: जय श्री कृष्ण।

0: कुमुदिनी सरवर्मा बोले, चंद्र सूर्य आकाशे बोले,
1: जय श्री कृष्ण।
0: कामयाना मंडल बोले, अष्टप्रहर आनंद बोले,
1: जय श्री कृष्ण।
0: रोम रोम व्याकुर्थ बोले, महामंत्र मन माहे बोले,
1: जय श्री कृष्ण।

94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं और भक्तिमय वातावरण में आप सबका स्वागत करजोर प्रणाम। यह है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, अभी अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और कृष्ण की लीलाओं के बारे में क्या ही कहना। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। और कृष्ण से जुड़े उनकी गोपियां, उनके जो भक्त है, राधा के बारे में क्या ही कहना। लेकिन मीरा, जी हाँ, मीरा जो थी कृष्ण भक्ति में डूबी एक अमर आत्मा थी। मीरा एक ऐसा नाम जिसे लेते ही मन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की एक पवित्र

पवित्र ज्योत जग उठती है। मीरा बाई सिर्फ कृष्णा की भक्ति नहीं थी, बल्कि उनका पूरा जीवन ही कृष्ण प्रेम का एक जीवंत गीत था। उनके लिए कृष्ण केवल मंदिर में विराजमान भगवान नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के साथ ही सखा, स्वामी और उनके हृदय की धड़कन थे।

ओई, इस एक भाव में उनकी पूरी भक्ति समाई हुई है। दुनिया ने उन्हें रोकना चाहा, समाज ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन मीरा का मन तो पहले ही शाम के रंग में रंग चुका था। उनके लिए संसार की बंदिशें छोटी पड़ गईं और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अनंत हो।

मीरा की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कृष्ण से धन, दौलत या सांसारिक सुख नहीं मांगा। उनकी एक ही इच्छा थी, कृष्ण के चरणों में अपना मन समर्पित कर देना। उनकी आंखों में शाम की छवि

0: के भजनों में विरह भी है, प्रेम भी है, आस्था भी है और पूर्ण समर्पण भी। जब वो कृष्ण को पुकारती है तो ऐसा लगता है जैसे एक विरहिणी अपने प्रिय को अपने हृदय की गहराइयों से बुला रही हो। उनकी भक्ति हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े शब्दों की नहीं बल्कि एक सच्चे और निश्चल हृदय की जरूरत होती है।
1: है आँख

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

श्रोताओं, मीरा ने दुनिया को एक बहुत खूबसूरत संदेश दिया। अगर प्रेम सच्चा हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, भक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। उन्होंने अपने जीवन के दुखों को भी कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। विषम परिस्थितियों में भी उनका विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका श्याम सदा उनके साथ है।

आज भी जब मीरा के भजन गूंजते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो या मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मन अपने आप भक्ति के सागर में डूब जाता है। इन भजनों में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक आत्मा की पुकार है, एक ऐसी पुकार जो युगों को पार करके आज भी हर कृष्ण प्रेमी के हृदय तक पहुंचती है। मीरा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा और प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र करना, अहंकार को छोड़ना और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो आइए कुछ पल के लिए संसार की चिंताओं को एक तरफ रख दें, आंखें बंद करें, अपने मन में वृंदावन की कल्पना करें, यमुना के किनारे मधुर बांसुरी की धुन सुने और मीरा की तरह प्रेम से पुकारे, हे मेरे गिरधर गोपाल, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण, मेरे मन में सदा आपका ही नाम बसा रहे। मेरे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास कभी कम न हो। यही है मीरा की भक्ति, निश्चल प्रेम, पूर्ण समर्पण और कृष्ण में विलीन हो जाने की एक अमर कहानी। प्रणाम, शुभ दिन।

0: सुनते हैं समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसनी, सभी को नमस्कार। ब्रिजवेजिय में आज सुरवारा ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। 5 सितंबर को आज सुने फ्रांसवा लिम स्ट्रीट के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उसने पुलिस को बताया कि कुछ अन्य ड्रग्स उसके दोस्त के घर में छुपाए गए हैं। प्रणव राहुल रूबी ब्रिजवेजिय का ही रहने वाला है और ऐसी खबर है कि वो एक सरकारी संस्था के सीईओ का बेटा है। तलाशी के दौरान आत्सु ने एक काले रंग के सूटकेस से 2 पैकेट बरामद किए, एक में 681 ग्राम के कोकीन होने जबकि दूसरा 323 ग्राम के क्रिस्टल मेथ होने का संदेह है। बरामद किए गए ड्रग्स की कुल लागत $15,02,25,000 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। मामले की जाँच जारी है। रास्तों पर घातक हादसों का सिलसिला जारी है। आज सुबह सहमौते में ब्लैक रिवर रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान मोगिस एवे रोहान माचे रोस के रूप में हुई है। वो पॉम्पलेमुस के मोप्लेजिया इलाके का रहने वाला था। पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार 4x4 वाहन में सवार लोगों ने कथित तौर पर पेचित में एक पार्टी में रात बिताई थी, जिसके बाद भी बॉम्बू की दिशा में रवाना हुए थे। इसी जानकारी के मुताबिक वाहन तेज रफ्तार से चल रहा था। इसी दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और 4x4 सीबी के कंक्रीट के खंभे से जा टकराया। इस हादसे में एक मौत के अलावा वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ कल रात खिशानू में 19 वर्षीय एक युवक का शव इलाके की एक झील से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार JPM की मदद से खोज अभियान चलाया गया। करीब रात बजे के करीब भवेश दुलप का शव बरामद किया गया। सचबे का ये निवासी सुरक्षा गार्ड था। शव दिवस आज दोपहर को मेडन कप की रफ्तार और रोमांच से गूंजने के लिए तैयार हैं। 2400 मीटर की ये प्रतिष्ठित क्लासिक रेस 3:20 पर शुरू होगी। प्रबल दावेदार माने जा रहे फ्यूचर स्विंग जो सुविराज गजाधर के अस्तबल से हैं और जिन्हें डोनोवान मानसूस सवारी करेंगे, वहीं गुड काउंसिल रैपिडाश

0: सुपीरियर फोर्स भी उन घोड़ों में शामिल हैं जिन पर खास नजर रहेगी। विदेशी स्तर पर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण देश के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई हैं जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। और मिस्र की टेलीविजन प्रस्तोता सारा खलीफा और 11 अन्य लोगों को मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: नंबर 61 अर्सेनल स्ट्रीट पोर्ट्री में 92 साल की 92-year-old बीबी रसीदा महाबाली, बीबी रसीदा महाबाली पैदाइशी नाम ईमान बाकस जो दादी से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:15 बजे इनके मकान नंबर 61 अर्सेनल स्ट्रीट पोर्ट्री से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्तेया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:15। कोबुम्बाई क्यूपिप में 57 साल के 57-year-old श्री ईश्वर सहाय जो ईश्वर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे के भाई श्री बिनेश सहाय के मकान कोबुम्बाई क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए अलीब्रियां वाकवा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड वेडर में 57 साल की 57-year-old श्रीमती आरती बैजनाथ पैदाइश नाम राम जिनी जो आरती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3:30 बजे के भाई सुदेश राम जिनी के मकान रॉयल रोड वेडर से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई ब्लांश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। ब्रंच रोड केवल नगर बेलगीव में 71 साल की 71-year-old श्री सुंदेव भीमोनाको जो धनेश्वर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान ब्रंच रोड केवल नगर बेलगीव से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रामकृष्ण मिशन रोड सेंट जूलियन में 55 साल के 55-year-old श्री शिवानंद लट्टू जो करण से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थात सुपहर 3 बजे इनकी मां सुमित्रा लट्टू के मकान रामकृष्ण मिशन रोड सेंट जूलियन से उठाकर दाह संस्कार के लिए सेंट जूलियन दत्मा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और रॉयल रोड कौडेमास्क में 75 साल की 75-year-old श्री रुमिला जॉन पैदाइश नाम बंधन जो रुमिला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉयल रोड कौडेमास्क से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौडेमास्क की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डेक्वा रोड मोटाईलोंग में 84 साल के 84-year-old श्री यतीन्द्र कुमार द्वारका जो किशोर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान इनकी पत्नी श्रीमती नयन तारा द्वारका के मकान डेक्वा रोड मोटाईलोंग से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्रेवकया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। और गायतों ज्वाली स्ट्रीट क्यूपिप में 68 साल के 68-year-old श्री केशवर रंगन जो आर्य रंगन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान गायतों ज्वाली स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए सुल्फेगिनो बाकवा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

जहाँ हो चुका है 12:15, आज है संडे का दिन 6 सितंबर, रविवार 6 सितंबर 2026, और आप सुन पा रहे हैं MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका ही मनपसंद लेजी शो संडे का, यानी कि सुहाना सफर प्रोग्राम। तो वैसे कैसे हैं, क्या हाल चाल है भाई? बस आज का दिन जो है कुछ ठंड ठंड है, और साथ में बहुत से लोग जो हैं इधर उधर घूमने जा रहे हैं, और शॉपिंग में होंगे या फिर बाजार में या फिर घर पर काम काज कर रहे होंगे, और हमें सुनकर आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो बस आप सबों को देवीना की ओर से प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम, आदाब और गुड आफ्टरनून। बस इस संडे को हमेशा म्यूजिकल बनाने के लिए हम आ जाते हैं हर संडे को, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा नॉस्टैल्जिक और बिल्कुल सुहाना ये प्रोग्राम आप सबों के लिए। तो चलिए संडे की इस खूबसूरत दोपहर में सारी फिक्रें, सारी चिंताएं साइड में रखिए। एक जो है आप लोग लंच ले रहे हैं तो बस बना पीछे शुभाहार, या फिर कुछ लोग अभी अभी उठे हैं, ब्रंच ले रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कुछ कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, या फिर कॉफ़ी टाइम। सो बस आज का दिन जो है कुछ लेजी ही होने का है, क्योंकि काम तो होता ही है, मगर एक दिन चाहिए जब हम लोग आराम कर सके। सो बस आप सबों का साथ होगा, और सफ़र शुरू कर लिया हमने बस एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, और यादों, गीतों और मोहब्बत के साथ सुहाना सफ़र प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो यह है सुहाना सफ़र, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी जब साथ हो अच्छे गीतों का। और अगला गाना जो है आप सभी के लिए, सागर जैसी आंखों वाली, सागर मूवी का गाना आप सबों के लिए। जस गेस कीजिए कि आज कौन सा कलाकार है जिसके ऊपर हम कुछ गाने चलाने वाले हैं। साथ ही आप अपने कुछ डेडिकेशंस, कुछ फरमाइशें भी भेज सकेंगे, मगर कुछ टॉपिक पर ही अगर हो सके तो बस सुहाना हो जाएगा। सो 4028070 पर अभी हम आपके जो है लाइंस खोलना शुरू करेंगे, साथ में 5250600 पर आपके मैसेजेस।

जहाँ देखते नहीं हैं मगर सुन रहे हैं आप शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज में ऋषि कपूर जी पर पिक्चराइज द चॉकलेट बॉय, द हैंडसम बॉय, रोमांस के एवरग्रीन हीरो और चार्मिंग सुपरस्टार ऋषि कपूर साहब। उन पर पिक्चराइज कुछ गाने तराने। अगर आपको ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज गाने पसंद है तो बस फटाफट हमें मैसेज कीजिए और साथ में कॉल्स भी। और ये गाना आप सबों के लिए फ्रॉम द मूवी खेल खेल में।

जी हाँ, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कुछ लोगों ने हमें देखा और हमने कुछ लोगों को देखा, मगर जिनसे मिलते नहीं है, बस हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, है ना? दोस्ती कयामत है और साथ में जो प्यार आप हम पर लुटाते हैं वो हमेशा जारी रखें। बस दोस्तों, आज का सफ़र डेडिकेटेड है बॉलीवुड के उस एक्टर के को जिसके चेहरे की मासूमियत, आँखों की शरारत और स्क्रीन पर रोमांस करने का अंदाज़ कई जनरेशन्स के दिलों में बसा हुआ है। ऋषि कपूर कहते ही याद आता है प्यार, मोहब्बत, रोमांस और वो खूबसूरत बॉलीवुड। तो आज 2 घंटों के लिए, यानी कि अभी से लेकर 2 बजे तक, उन पर कुछ पिक्चराइज, कुछ फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उनके साथ, और बस कहेंगे राज कपूर साहब के घराने के सितारे के साथ। सो वेलकम टू ऋषि कपूर स्पेशल सुहाना सफ़र। और साथ में आज एक और ख़ास बात है, तो हमने सोचा हमेशा तो ऋषि कपूर साहब के गाने चलते ही हैं, क्यों ना हम शामिल करते हैं उनके दो भाई थे ना, उनके बड़े भाई साहब जो थे रणधीर कपूर साहब, साथ में उनके जो लेट भाई थे, उन पर भी चराज भी कुछ गाने हम चलाने वाले हैं, राजीव कपूर साहब पर भी। तो बस 3 जो बेटे हैं राज कपूर साहब के सुपुत्र, तो बस उन पर पिक्चराइज कुछ गाने, मगर खास ऋषि कपूर पर, क्योंकि उनका जन्मदिन वो बीत चुका है और उसका जो बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। सो बस ऋषि कपूर साहब, रणधीर कपूर साहब, साथ में राजीव कपूर, तो बस ये हो जाए आप सबों के लिए।

0: जहां कर्ज मूवी का गाना है
1: और ये था जो हम मना रहे हैं 4 सितंबर को ऋषि कपूर साहब का बर्थ एनिवर्सरी तो बस हमने सोचा क्यों ना हम डुबकी लगाते हैं उनकी यादों में तो बस ओम शांति ओम आप सभी के लिए

0: RM3 Radio. Radio.
1: जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और साथ में ऋषि कपूर साहब थे इस फिल्म में और ये रोमांटिक गाना रफी साहब की आवाज़ में नहीं किशोर दा की आवाज़ में एक्चुअली और रफी साहब की आवाज़ में चलेगा ऋषि कपूर पर पिक्चर आज सा गाना बाद में। फिलहाल ये गाना आप सबों के लिए स्पेशली अनीता जी और फिकॉन फ्लक आपके पूरे परिवार आपके सभी दोस्त और साथ में हमारी टीम के लिए थैंक यू ओ हंसिनी मेरी हंसिनी सभी हंसिनियों के लिए ये गाना। और आपको बता देते हैं कि आज ऋषि कपूर जी पर पिक्चर आज कुछ गाने मगर इसमें याद कर रहे हैं उनके दो भाई साहब रणधीर कपूर साहब साथ में राजीव कपूर साहब पर पिक्चर आज एक दो गाने अगर आपको पसंद है क्योंकि इन तीनों भाई में अगर कोई सफल हुआ है ज़्यादा सफल हुआ है वो है हमारे चिंटू जी यानी कि ऋषि कपूर साहब और उनके भाई साहब जो हैं उन्होंने भी एक्टिंग में कदम रखा इतनी सफलता उन्हें नहीं मिली फिर भी उन पर पिक्चरराज गाने और वे हमेशा याद रहेंगे। तो बस ओ हंसिनी यह आप सबों के लिए है।

चलिए इस ब्यूटीफुल से गाने में नाम जोड़ते हैं हमारे जो डियर फ्रेंड हैं नील नील सकाराम और ये गाना उनकी वाइफ शिवानी के लिए उनके मम्मी पापा के लिए देवयानी और सुनील सुबह शुमे के हैं और एंजॉइंग द शो थैंक यू सो मच एंजॉय संडे

हर जाए मूवी का गाना था रणधीर कपूर साहब पर पिक्चराइज, जिसमें दिखी थी साथ में तीना मुनिम। और इस फिल्म के सभी गाने सभी को बहुत पसंद आए, सिनेमा प्रेमियों को। बस कुछ ऐसे ही गाने हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं आज की जो आज का दोपहर जो है आप सबों के लिए खुशगवार हो। बस यही है हमारी दिली तमन्ना। बस देविना है आप सबों के साथ हमेशा हर संडे की तरह। अभी से देखकर 12 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और लगभग एक घंटा वो है समाप्त होने को है। बस टाइम जो है, समय जो है, इतनी तेज़ी से जा रही है कि क्या कहें। बस जो आज है इसमें आप खुश रहें और आगे जो होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा, जिस भी पॉजिटिव जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ऐसे में जब ज़िंदगी में ना जब कुछ ख़राब चल रहा होता है, बुरा चल रहा होता है, तो हम किस्मत को दोष देते हैं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी फूटी किस्मत। मगर जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम रोते नहीं हैं, नहीं कहते कि हाँ मेरी किस्मत। बस किस्मत जो है, सब कुछ लोग किस्मत के पीछे छुप जाते हैं, कुछ लोग एक्शन में विश्वास रखते हैं। तो बस जो भी होता है हमारे साथ अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा है तो बी पॉजिटिव और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप रास्ता ढूंढिए। बस कंप्लेन मत कीजिए कि कब ये सब होगा, बस आप आगे बढ़ते चलिए और देखिएगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और किस्मत को दोष देना बंद कीजिए, बस जो है उसमें आप खुश रहें। तो मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये जो होता है कभी कभी कहते हैं ना, किस्मत जो है प्यार में जो है भगवान बनाता है जोड़ी। अब कितना वो सही है हमें पता नहीं। बस ये गाना आप सबों के लिए फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग। और इस फिल्म की जो गाने हैं बहुत ही मशहूर हुए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी इसमें दिखी थी और ये फिल्म हिट हुई थी। और ये फिल्म जो है प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर साहब। और इस फिल्म के में इस गाने में नाम जोड़ते हैं माना जी का रिव्या जौंपा और कनील, कनिष, कबीर, किशन, किरण, शिव, सत्यम, केविन, उन सभी के लिए ये गाना। लता जी की आवाज साथ में सुरेश वाडकर साहब।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से अभी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूर्ण श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। कल रात एक और दुखद घटना घटी, इस बार गिशौनू में। जी हां, 19 वर्षीय भूवेश दुलब जिन्हें आयुष नाम से भी जाना जाता था का शव इलाके की एक झील में पाया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार GIPM की सहायता से टीम ने रात के लगभग 8:30 बजे कार्रवाई शुरू की। खोज अभियान रात के 10:10 बजे शुरू हुआ और रात के 11:20 पर शव को बाहर निकाले जाने के साथ समाप्त हुआ। सेंचीबे के रहने वाले और सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत इस युवा के शव को बाद में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया और मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। आज सुद्वारा ब्रजव्याजा में नशीली पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई। 5 सितंबर को अधिकारियों ने फ्रांसवा लिम स्ट्रीट पर एक व्यक्ति को 100 ग्राम गांजे के साथ रोका। जब उसे सूचित किया गया कि पास्कल रोड स्थित उसके घर की भी तलाशी ली जाएगी तो उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि अन्य नशीले पदार्थ उसके दोस्त प्रणव राहुल रूबी के घर पर छिपाए गए हैं। प्रणव भी ब्रजव्याजा के ही निवासी हैं और प्राप्त जानकारियों के अनुसार वह एक राज्य संस्थान के CEO का बेटा है। मॉरिशस इबोला के खतरे को देखते हुए अपनी सतर्कता बनाए हुए है। क्वारंटाइन के उपायों को अगले 3 महीनों के लिए यानी 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ये नियम उन यात्रियों पर लागू होता है जिन्होंने मॉरिशस पहुंचने से पहले के 21 दिन के दौरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो या दक्षिण सूडान में प्रवास किया हो और वहां से होकर गुजरे हो या और वहां की यात्री हो। WHO की सिफारिशों के तहत लिया गया है जो कड़ी निगरानी रखने की सलाह देता है। शौदे मॉस में आज सपहर के 3 बजे से मीडियम कप की लय में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2400 मीटर की अपनी दूरी के साथ ये महान क्लासिक प्रतियोगिता इस सत्र की सबसे लंबी रेस है। और विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि शनिवार को कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में सियेरा स्काई पार्क हवाई अड्डे के पास एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। कोम्बुम्बाई क्यूपिप में 57 साल के 57 years old के श्री ईश्वर सहाय जिन्हें सब लोग ईश्वर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके भाई श्री बिनेश सहाय के घर कोम्बुम्बाई क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Allez, brillant, va quoi que je me chante pour mille déjà. Jaegi, cremation today at 2 p.m. Gaëtan Duval Street Cupid Me. Gaëtan Duval Street Cupid Me. 68 साल के, 68 years old के, श्री केशवर रंगन. श्री केशवर रंगन, जिन्हें सब लोग आया रंगन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उनकी के घर गायतों जीवाल स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फी खिनु वाकवा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. जो प्यार में ऐसा ही होता है, जो नहीं हुआ वो हो जाता है, दिल खो बैठते हैं किसी के लिए।

और पता नहीं कब हमें मोहब्बत हो जाती है। ये वादा रहा मूवी का गाना और इसमें दिखे थे ऋषि कपूर साहब, और इससे पहले आपने सुना राजीव कपूर साहब पर पिक्चराइज द गाना। वो बस हम क्या कहें, और कुछ एक्टर जो है ना यादों का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे ऋषि कपूर साहब उन्हीं कलाकारों में से एक थे। उनके गाने सुनते ही कभी स्कूल के दिन याद आते हैं, कभी कॉलेज रोमांस, कभी पहली मोहब्बत, जैसे उनकी मोहब्बत, उनकी जो प्रेम कहानी थी नीतू सिंह के साथ और उनकी शादी हुई, और ये जोड़ी जो है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी वो ज़बरदस्त रहे। और उन पर पिक्चर आज एक और गाना हम चलाने वाले हैं बाद में। और कभी कभी वो ज़माना जब कैसेट प्लेयर पर एक ही सॉन्ग बार बार सुनना करते थे, वो ज़माना याद आता है ऐसे गाने सुनकर। और ऋषि कपूर के सॉन्ग्स की तो बात ही कुछ और थी, रोमांस में इनोसेंस, डांस में इनर्जी और एक्सप्रेशन में एक अलग ही चॉम। और उन पर पिक्चराइज इतने गाने हैं दोस्तों कि आप जानते हैं हम सभी चला नहीं पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड आपकी ओर से और कुछ हमारी ओर से। और भूलिएगा मत, आप उनके भाई साहब रणधीर कपूर साहब पर भी पिक्चराइज अगर कोई गाना सुनना चाहते हो तो बस हम कोशिश करेंगे उनको आपको सुनाने के लिए, साथ में राजीव कपूर पर भी। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत मेलोडी, मगर ये है कुछ अलग सा, हमेशा की तरह आती है हमारी जो श्यामा रघुनंदन जी ऑफ खोंगुब और उनके जो भाई साहब हैं जयप्रकाश जी, साथ में हैं नम्रता भाभी, केशव युदेश, और श्यामा जी की जो सहेलियाँ हैं वीना रामफल, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकलू, वे सुनना चाहती हैं मेला मूवी का गाना, ओल्ड मेला मूवी, मोहन की मुरलिया बाजे। जैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा चल रही है तो बस हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं, और ये गाना श्यामा जी आपके लिए

जहां कहते हैं ऋषि कपूर साहब का रोमांस जैसे चाय और संडी। उनके करियर में रोमांटिक सॉन्ग्स की एक लंबी लिस्ट है, कभी लवर बॉय, कभी इमोशनल हीरो, कभी मिस्चीवस यंग मैन। उन्होंने हर शेड को अपने अंदाज में जिया और उनकी हीरोइंस के साथ उनकी केमिस्ट्री ने बॉलीवुड को दिए कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। तो सभी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए ये गाना वॉल्यूम जरा सा बढ़ दीजिए, बस पर्दा है पर्दा। अपनी जो फ्यूचर वाइफ थी ना, वो नीतू सिंह, उसके लिए उनके साथ ये गाना आप एंजॉय कीजिए। और ये गाना स्पेशली जाता है हरीश बाबू आपके लिए, बुबासे से आपके खास दोस्त के लिए, और सभी जो लिसनर्स हैं, सभी ऋषि कपूर साहब के फैंस हैं, रफ़ी साहब के फैंस हैं, बस पर्दा है पर्दा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

जकल्यानी जी, ये रहा आपके लिए सितमगढ़ मूवी का गाना। इसमें नजर आए थे ऋषि कपूर साहब, साथ में थे धर्मेंद्र साहब और पूनम ढिल्लन। किशोरदा की आवाज़ में ब्यूटीफुल सा गाना, प्यार जब ना दिया जिंदगी ने कही। फिर सितमगढ़ कौन हुआ, आदमी या जिंदगी? बस ऐसे ही चलते जाना है जिंदगी में। और आज संडे का दिन, तो हैव ए नाइस संडे मेरे दोस्त। और लंच टाइम खाना खाइए, रिलैक्स कीजिए और गाने सुनते रहे। और अगर आप घूम रहे हैं, एंजॉय।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गाना आपने सुना भी, एक राधा एक मीरा। और ऐसे में ये गाना हम इसमें नाम शामिल करते हैं गायत्री जी का, उनकी पसंद का गाना था। और इसमें राजीव कपूर साहब का उनकी मूवी थी, साथ में मंदाकिनी भी थी। और ये फिल्म काफ़ी चर्चित रही, काफ़ी हिट रही, और उनके सभी गाने आज भी बखूबी लोग इनको पसंद करते हैं। तो बस ये गाना गायत्री जी आपके लिए था, और साथ में आपके पूरे परिवार के लिए, स्पेशली आपकी जो हाँ जी आपके परिवार जो हैं, ऑफ कोर्स भाभी मीरा है, मेधा, गिरिशा, अमृता, उनकी आपकी बहन नेहा, क्षिति, दिव्या, सुधीर, कमलेश और सभी जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए।

जग लगाना है हम शामिल करते हैं वंस अगेन द नेम शुमे कोइये के हैं हमारे प्यारे दोस्त नील सकाराम और उनकी प्यारी वाइफ हैं शिवानी मम हैं दिव्यानी दाद सुनील और जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं किशोर दा की आवाज़ में फिल्म है हर जाई

वैसे हम थीम को मेंटेन करते हैं इस प्रोग्राम में, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो गाने हम चला देते हैं अलग से. सो बीना जी ऑफ कटोबोन, ये आपके लिए घराना मूवी का गाना है. बीना जी

चलिए, बस अगर ऋषि कपूर की फिल्म आपको दोबारा सिनेमा हॉल में देखने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म चूज करेंगे आप? बॉबी, कर्ल्स, चांदनी, सागर, प्रेम ग्रंथ, दीवाना या कोई और फिल्म? तो ना 2 बजे के बाद हम प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज कुछ ऐसे गानों की मांग आ रही है कि बस 90s वाले गाने भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज 2 बजे के बाद उन पर ही पिक्चराइज कुछ गाने चलाएं, क्योंकि 90s में भी उनका बोलबाला था। सो बस क्या मौसम था और आज भी क्या मौसम है, और आज का मौसम है ऋषि कपूर साहब के नाम, और हमने जोड़ा उनके भाई साहब रणधीर कपूर साहब, साथ में राजीव कपूर साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने भी। अभी के लिए इब्राहिम जो पोर्ट्रिस, ये गाना आपके लिए, और साथ में जिन लोगों के गाने हम नहीं चला पाएंगे, सो सॉरी, बस आपका नाम जोड़ते हैं यहाँ पर हैं। ओके, मैसेज पर हम पढ़ेंगे अभी। दूर नहीं निकलना है, बस पास पास ही रहना है। नमस्कार जी, मोदालबिया की अनीता जी, पहले से ही मैसेज भेजा था करुणा, अमृता और सभी दोस्तों के लिए। फिल्म बॉबी का वो गाना हमने चला दिया था, मुझे कुछ कहना है, बस इसमें आपका नाम जोड़ते हैं अमृता जी।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: आज इस समय का वो टिक टिक कर रही है, वो चुका है 1:55. थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और इसके बाद हम प्रोग्राम जारी रखेंगे. सुहाना सफर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमें. तो बस आप सभी को हाय हेलो और सभी को हमारा प्यार है. और एक दो फरमाइशें हैं जो 2 बजे के बाद ऋषि कपूर पर ही पिक्चराइज 90s वाले गाने हम चलाने वाले हैं. अभी के लिए सो सॉरी, आपके गाने हम नहीं चला पाएंगे, मगर इसमें आपका नाम जोड़ते हैं नंदा जी ऑफ पाई. और नंदा जी का जन्मदिन था 31st August को. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नंदा जी पति की ओर से. और साथ में उनकी जो नीस है स्वीटी, उनका भी बर्थडे था. हैप्पी बर्थडे टू यू बिलेटेड, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीटी, उनके पति की ओर से, 2 बच्चों की ओर से. साथ में है डॉक्टर जीत, उनका भी बर्थडे है. डॉक्टर जीत, आपका हैप्पी बर्थडे वाइफ निष्ठा की ओर से और सभी परिवार की ओर से. नंदा जी आपकी 2-3 बहनें हैं, मोहल फैमिली और बिसेसर फैमिली. और साथ में ये गाना आशा जी खुशनुआ से है और उनका जो एक भांजा है बीमार है, अस्पताल में है. सो विश हिम हैप्पी क्विक रिकवरी. और परिवार जो है सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाएं. तो बस बी सेफ, बी हैप्पी. और सभी को कह रही हैं आशा जी हैप्पी बर्थडे. सो बस आप सबों की अच्छी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं. बस तेरे हम सफ़र मीत है मेरे. मिलते हैं बहुत जल्द 2 बजे के बाद.

दो बज चुके हैं यहाँ पर और फिर मनोरंजन पर समाचार कुछ देर में पढ़े जाएंगे और अभी के लिए ये गाना दीवाना मूवी का गाना ऋषि कपूर साहब के फैंस के लिए हो जाए कुछ रोमांस की दुनिया में कदम रखते हैं।

0: टाइम चेक 2:03 हो चुके हैं अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से अभी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं सरकार ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि नाइस को फिर से शुरू किया नाइस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवाओं में नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है साल 2012 में शुरू किए जाने के बाद में रोक दिए जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अब एक पायलट संस्करण के साथ वापस आया है ग्रेड 8 के 200 छात्र नागरिक शिक्षा अनुशासन नेतृत्व सुरक्षा और सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ी 14 दिनों की गतिविधियों में भाग लेंगे इसमें नागरिक समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी शॉ डी मास में आज दोपहर मिडेन की लय में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार है 2400 मीटर की अपनी दूरी के साथ ये महान क्लासिक प्रतियोगिता इस सत्र की सबसे लंबी रेस है घुड़दौड़ के ढेरों शौकीन शॉ डी मास में उपस्थित होकर या अपने घरों से इस बड़े रेसिंग का आयोजन के आयोजन का आनंद उठा पाएंगे ये रेस दोपहर के 3:20 बजे तक प्रस्तावित है अब बस ये देखना बाकी है कि इस महान क्लासिक प्रतियोगिता का खिताब कौन अपने नाम करता है कल रात एक और दुखद घटना घटी इस बार खिशौनों में 19 वर्षीय भूवेश दुलब जिन्हें आयुष के नाम से भी जाना जाता था का शव इलाके के एक

0: की एक झील में पाया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जीआईपीएम की सहायता से टीमों ने रात के 8:30 बजे कार्रवाई शुरू की। खोज अभियान रात के 10:10 पर शुरू हुआ और रात के 11:20 पर शव को बाहर निकाले जाने के साथ समाप्त हुआ। सेंचुबिया के रहने वाले और सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत इस युवा के शव को बरामद के बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया। मौत की सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि दक्षिण लबनान में तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हिजबुल्ला ने हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने इसे युद्ध विराम और समझौतों का उल्लंघन करार दिया है। हालांकि इस हमले में किसी भी इजरायली सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रुद वैद्य में 57 years old की श्रीमती आरती बैजुनत पैदाश नाम रामदिनी और जिन्हें सब लोग आरती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के 3:30 बजे उनके भाई श्री सुदेश रामदिनी के घर रॉयल रुद वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM डुक्वें रोड मोताय लोंग में 84 years old की श्री यतिंद्र कुमार दुआका जिन्हें सब लोग किशोर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती नयतारा दुआका के घर डुक्वें रोड मोतायलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेवक्योया के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

वेलकम बैक, ये है सुहाना सफ़र प्रोग्राम और आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम। अभी से लेकर 3 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे प्यार भरे रोमांटिक गाने और कुछ गानों में ऋषि कपूर साहब भी दिखे थे। 90s का ज़माना, 70s से लेकर 90s पर उनका बोलबाला था और स्पेशली जो यंगस्टर्स थे उनको पसंद करते थे उनके गाने, उनके तराने। और जैसे कहते हैं ना, ऋषि कपूर ने हमें सिर्फ फिल्म्स नहीं दी, उन्होंने हमें मेमोरीज दी हैं। उनकी स्माइल, उनका रोमांस, उनका डांस, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और सबसे बढ़कर उनके गीत। आज भी जब कोई ऋषि कपूर साहब का गाना रेडियो पर बजता वो सुनता है ना, तो एक पल के लिए लगता है जैसे बॉलीवुड का वो गोल्डन एरा फिर से हमारे सामने आ गया हो। सम स्टार्स एंटरटेन अस, सम स्टार्स बिकम मेमोरीज, ऋषि कपूर बिकेम बोथ। वैसे कहते हैं गीत ख़त्म हो जाता है, फिल्में ख़त्म हो जाती हैं, मगर कुछ कलाकार दिल से कभी नहीं जाते। ऋषि कपूर भी उन्हीं नामों में से एक है। और इससे पहले आपने सुना दीवाना मूवी का गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, ये था फॉर मनोज साहब, मनोज सोहन जी रिस्पॉन्स ट्रिब्यूशन से हैं, वाइफ नजीमा के लिए भी। और वे कहते हैं, मनोज जी कहते हैं उनको ऋषि कपूर साहब बहुत पसंद हैं और उनकी फिल्में उन्होंने देखी हैं, उनके गाने बढ़िया हैं और हमेशा की तरह वे याद कर रहे हैं उन बीमार लोगों को जो अस्पताल में हैं या घर पर होंगे या अकेले होंगे। और गया सिंह आश्रम के रेजिडेंस के लिए, सभी के लिए ये गाना उन्होंने मांगा। और बस ये जो गाना है ना अभी के लिए, इससे पहले हमने सुना बोल राधा बोल फिल्म मूवी का, नहीं ओ राधा तेरे बिना, राधा का संगम मूवी का गाना। और ये मैसेज है, सुपर्ब शो, थैंक यू, कीप इट अप, आउटस्टैंडिंग लेडी, थैंक यू सो मच। और ये हो मैसेज था दारन, श्वेता, रविश, प्रीशा, लविशा और आपादू फैमिली ऑफ रोशनुआ के लिए। ऐसे हिस्सा देते रहें, हमारा साथ और आपका साथ रहे तो बस क्या नहीं हो सकता, और आपको खुश करना हमारा काम है। तो बस अगला गाना आप सबों के लिए, फिल्म है प्रेम ग्रंथ और ऋषि कपूर साहब के साथ दिखी थी द ब्यूटीफुल गॉर्जियस माधुरी दीक्षित।

ओहो, टाइम फ्लाइज कहते हैं ना, जैसे टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैविंग ए गुड टाइम, और ऐसे गाने सुनकर मजा आ जाता है। और हमारा सुहाना सफर भी अब पहुंच रहा है अपने अंतिम पड़ाव पर, और हो चुका है 2:42। बस सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, फ्रॉम द मूवी दीवाना, और इट्स गोज टू साजिद जी ऑफ ब्राजील। और उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर साहब की सभी फिल्में, कि सभी लगभग सभी फिल्में उन्होंने देखी हैं और अच्छा लगा। साजिद जी, ये रहा आपके लिए एंड फॉर द फैंस ऑफ ऋषि कपूर साहब।

जा ये प्यार प्यार क्या है, इकरार यार क्या है, ये जीत हार क्या है, प्यार में हार जीत नहीं होती, जो होता है बस प्यार होता है। बस इतने प्यार के लिए आप लोग प्यार देते हैं, आप म्यूजिक

लवर्स, हम भी म्यूजिक लवर्स और एक साथ मिलते हैं और ये सुहाना सफर और भी जबरदस्त बन जाता है, खूबसूरत बन जाता है आपके साथ के लिए. थैंक यू सो मच मेरे दोस्त. और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो प्रोग्राम है समाप्त होने वाला है और कुछ सफ़र मंजिल तक पहुँचते हैं और कुछ सफ़र दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं. और आज ऋषि कपूर के गीतों के साथ आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही था और आपका साथ भी हमेशा इस सफ़र को खूबसूरत बनाता रहता है. यादों भरा, गीतों भरा और बिल्कुल सुहाना सफ़र था. सो बस आपसे रुखसत चाहेंगे, टाइम टू साइन ऑफ और फिर मिलेंगे एक नया सफ़र लेकर, एक नई कहानी और ढेर सारे खूबसूरत गीतों के साथ बहुत जल्द. और ऐसे में हमेशा हमारा साथ देते रहें ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन. हमारे बाद आएंगे अजय प्रताप सिंह, प्रोग्राम है ऐसा भी होता है. तो दिव्या की ओर से ढेर सारा प्यार है, लव यू ऑल, बाय बाय. ये गाना आप सबों के नाम करते जाते हैं.

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
1: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. आज तड़के ब्लैक रिवर रोड पर बोंबू की ओर सैमौते के पास एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई,

0: में 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई। तीन लोगों को ले जा रहा ये 4x4 वाहन एक बिजली के खंभे से बड़ी जोर से टकरा गया। पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके वाहन की छत इस दुर्घटना के भयानक प्रभाव को दर्शाती हैं। कैनेट में वाहन के बिखरे टुकड़े और व्यक्तिगत सामान इस बात की गवाही देते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। खबरों के अनुसार वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, तभी उसने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद वाहन खंभे से जा टकराए और वहां जाकर खेत में रुक गया। घायल हुए अन्य दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आजसू द्वारा भोजवैज्य में नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई। 5 सितंबर को अधिकारियों ने फ्रांसवा लिम स्ट्रीट पर एक व्यक्ति को 100 ग्राम गांजे के साथ रोका। जब उसे सूचित किया गया कि पास्कल रोड स्थित उसके घर की भी तलाशी ली जाएगी, तो उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि अन्य नशीले पदार्थ उसके दोस्त प्रणव राहुल रूबी के घर पर छिपाए गए हैं। प्रणव भी भजवेजिया का ही निवासी है और प्राप्त जानकारियों के अनुसार वह एक संस्थान के सीईओ का बेटा है। तलाशी के दौरान आजसू के अधिकारियों ने एक काले रंग के सूटकेस में दो पैकेट बरामद किए, जिसमें संदिग्ध कोकेन पाई गई, जिसका कुल वजन 681 ग्राम है। इसके अलावा एक अन्य पैकेट भी मिला, जिसमें 323 ग्राम संदिग्ध क्रिस्टल मेथ भी मौजूद था। जब्त किए गए नशीली पदार्थों की कुल लागत लगभग 15 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। शौर्य मास में आज सपहर मेडन कब की लय में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2400 मीटर की अपनी दूरी के साथ ये महान क्लासिक प्रतियोगिता इस सत्र की सबसे लंबी रेस है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि नेपाल के पहाड़ी जिले गोरखा में रविवार सुबह को ठेरांग नदी में बाढ़ उतर आई। इसके बाद प्रशासन ने बूढ़ी कंडक की नदी के बेसिन में अलर्ट जारी किया। बाढ़ में 4 घर और एक सस्पेंशन ब्रिज बह गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को आई बाढ़ में अब तक 1344 शव मिल चुके हैं, जबकि करीब 5000 लोग अभी भी लापता हैं। तो ये थे अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड सेंचुरी में 19 साल की 19 ईयर्स ओल्ड की श्री भुवेश डुलब, जिन्हें सब लोग आयुष के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड सेंचुरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचुरी सोंगुलेट किश्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयल रोड होशतिया में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हवंती चमन, जिन्हें सब लोग राम भजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री अर्जुन चमन के घर रॉयल रोड होशतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.
3: You're listening to RM3 Radio, Man.

इतना बुरा हो गया है कि प्रकृति भी कांप उठी है उसकी बुराई से। कहीं पर तूफान आ रहा है तो कहीं पर जलजला प्रहार कर रहा है, कहीं पर भूखमरी है तो कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है तो कहीं पर लोग तापमान की गर्मी से जान गंवा जा रही है। जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। कैसी है दुनिया, कैसे ये लोग, कैसा चल रहा है ये समाज। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक, माफ कीजिए, 94.6 98.2 FM पर ये है MBC और फ्री रेडियो मनोरंजन। आज प्रताप सिंह के साथ शाम के 3:06 हो गए हैं। चले ये रहस्यमय दुनिया में जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

इस दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन्हीं में से एक है इफिल टावर। ला टू इफिल, जो कि फ्रांस पेरिस में पाया जाता है, और यह विशाल लोहे का टावर है। इसका निर्माण हुआ 1887 में और 1889 में पूरा हुआ। डिजाइन इसका इंजीनियर गुस्ताव इफिल ने कंपनी ने बनाया था। तो इस व्यक्ति का नाम था गुस्ताव इफिल, इसलिए नाम पड़ा ला टू इफिल। उन्होंने बनाया इस टू इफिल को। क्यों बनाया गया? इसे 1889 की पेरिस विश्व प्रदर्शनी के लिए बनाया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति को 100वीं वर्षगांठ से जुड़ी थी। आज इसकी ऊंचाई लगभग 330 मीटर है। बहुत से लोगों को यह टावर पसंद नहीं आया था और कुछ कलाकारों ने इसकी आलोचना भी की थी, परंतु आज यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से है और एक पेरिस का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे स्थायी रूप से रखने की योजना नहीं थी, लेकिन बाद में इसे बचाए रखा गया और यह रेडियो संचार के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। रात को यह चमकता है। सो अगर एक दिन आपको मौका मिले फ्रांस जाने के लिए तो जाइएगा और ला टू इफिल का भ्रमण कीजिएगा। बहुत ही ऊंचा है और रात को ऐसा जगमगाता है, ओए होए मानो दिवाली है। सो द इफिल टावर, ला टू इफिल दुनिया के सबसे बड़ी इमारतों में से एक है और यह फ्रांस पेरिस में पाया जाता है।

आजकल दुनिया भर में मौसम परिवर्तन हो रहे हैं वो क्लाइमेटिक चेंज ग्लोबल वार्मिंग और एक है एल नीना और एक है एल नीनो और हम सब अभी एल नीनो से कंसर्न है और आखिर ये एल नीनो क्या है सो हिंद महासागर में जो द्वीप है पैसिफिक ओशन में दुनिया भर के जो देश है जो समुद्र में पाए जाते हैं सभी लोग एल नीनो से प्रभावित है सो एल नीनो जो है एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और यह गर्म पानी और उससे जुड़ी वायुमंडल परिस्थितियां दुनिया के कई हिस्सों के मौसम और बारिश के परिवर्तन को बदलता रहता है सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व से पश्चिम तेज हवाएं चलती है जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं ये हवाएं गर्म समुद्री पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास समुद्र की गहराई के ठंडा पोषक तत्वों वाला पानी ऊपर आता है इसे अपवेलिंग कहते हैं लेकिन एल नीनो के दौरान ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती है और इससे मौसम परिवर्तन होता है इसका प्रभाव पड़ सकता है दक्षिण अमेरिका में कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश और बाढ़ का खतरा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन में सूखा और कम बारिश की स्थिति बन सकती है और भारत में जो है इसका असर भी पड़ सकता है और आजकल पड़ रहा है सो एल नीनो के दौरान वैश्विक औसत तापमान बढ़ने की संभावना रहती है इसीलिए एल नीनो वाले वर्षों में रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिल सकती है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो हिंद महासागर है इंडियन ओशन में जो टापू है नवंबर दिसंबर में एल नीनो के कारण यहाँ पर अत्यंत गर्मी होगी बहुत बहुत गर्मी होगी ऐसी गर्मी ना हमने कभी देखी है ना कभी महसूस की है दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों एल नीनो के कारण ऐसा भी होता है

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: और आपका हम आपका भी हम स्वागत से कर रहे हैं। स्वागत है ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। ये शाम के 3 मिनट के 24 मिनट। दुनिया में बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां आई और चली गई। लता मंगेशकर, आशा भोसले, माइकल जैक्सन, अमरीश्वरी, और आवाज़ की दुनिया में खालीपन सा छा गया है, स्पेशली वन माइकल जैक्सन लेफ्ट अस। और माइकल जैक्सन पॉप सिंगिंग के राजा के प्रिंस माने जाते थे और उनके जीवन कंट्रोवर्सी से भरी रही। माइकल जैक्सन की मृत्यु 25 जून 2009 में हुई थी और उस दिन माइकल जैक्सन उस समय लॉस एंजेलिस के अपने किराए के घर में रह रहे थे। वे अपने आगामी शो दिस इज इट कंसर्ट की तैयारी कर रहे थे और उन्हें उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मुरे उनके साथ थे। जैक्सन को नींद की गंभीर समस्या थी और उन्हें सोने में मदद करने के लिए विभिन्न दवाएं दी जा रही थी। दोपहर के आसपास उनकी मृत्यु हुई और माइकल जैक्सन को प्रोटोकॉल दिया गया। यह अस्पतालों में सामान्य

टीसियों के लिए इस्तेमाल होते बहुत शक्तिशाली दवा है और घर पर नींद के लिए उसका इस्तेमाल जोखिमपूर्ण था। कुछ समय बाद माइकल जैक्सन की सांस नहीं चल रही थी और उनकी नारी मिल नहीं रही थी। मेडिकल मदद और CPR से उसको फिर से जीवित कराया जाने की कोशिश की, पर जो है माइकल जैक्सन जो है जा चुके थे। और जब माइकल जैक्सन इस दुनिया से विदा हुए सो बहुत से लोगों ने रोया और शोक चारों ओर छा गया, क्योंकि माइकल जैक्सन की आवाज़ में वो जादू थे कि क्या बताएं। और माइकल जैक्सन की मौत के बाद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनके संगीत की बिक्री और दुनिया भर में उसकी चर्चा बहुत बढ़ गई। उनका अंतिम रिहर्सल फुटेज बाद में दिस इज़ इट नाम की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। माइकल जैक्सन जो थे वो बहुत अच्छी तरह से गाते थे, बच्चे से लेकर बड़े लोग भी उन्हें पसंद करते थे। हालांकि उसकी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी थी, पर कहा जाता है कि डॉक्टर ने उसे ओवरडोज की दवाई दी और वो दवाई ओवरडोज हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और माइकल जैक्सन अपने स्किन में जो है इंजेक्शन कराते थे जवान दिखने के लिए। वेल, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आज माइकल जैक्सन इस दुनिया में नहीं है, पर हम उनका स्टाइल कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके जो गाने हैं हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी अजीब मौत भी होती है, बड़ी बड़ी हस्तियों की मौत हो जाती है और हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसी मृत्यु हुई थी। इतने बड़े कलाकार को क्या कमी थी? माइकल जैक्सन को सब कुछ था, धन दौलत पैसा डॉक्टर सब कुछ नौकर चाकर, फिर भी एक डॉक्टर के ओवरडोज की दवाई से आज उनकी जान चली गई।

आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर लोग भड़क जाते हैं, इतनी हिंसा क्यों है लोगों में, इतनी नफरत क्यों है। और इस नफरत के कारण 11 सितंबर साल 2001 में अमेरिका के सबसे बड़े सबसे ऊंचे इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने हमला करके कई लोगों की जान ले ली। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने नॉर्थ टावर से टक्कर मारी सुबह के 8:46 AM। फिर 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने साउथ टावर से टक्कर मारी। दोनों इमारतों में भीषण आग लग गई और बहुत बड़ी मात्रा में धुआं फैल गया और लोगों को इमारतों से बाहर निकालने के लिए कहा गया और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई। फिर 9:37 AM तीसरे विमान अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 ने पेंटागन को टक्कर मारी। 9:59 AM साउथ टावर ढह गया। 10:03 पर चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 पेंसिल्वानिया में गिरा। यात्रियों ने विमान के हाईजैक करने वालों का विरोध किया था। विमान अपने इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। 10:28 पर नॉर्थ टावर भी ढह गया। कितने लोगों की मौत हुई 11 सितंबर 2001 के इन हमलों में? लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई जिनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वाले लोग थे। विमान यात्रियों और चालक दल के स्थल तथा बचाव कर्मी शामिल थे और हमले के पीछे अलकायदा और उसके नेता ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार माना गया था। और इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ बड़े सैन्य और राजनीतिक अभियान शुरू किया। अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान के सैन्य कार्रवाई शुरू की क्योंकि वहां तालिबान सरकार अलकायदा और बिन लादेन को शरण दे रही थी। बाद में 2011 में अमेरिका अभियान ने ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबू तबाद में मारा गया। ट्विन टावर्स की जगह अब 9/11 मेमोरियल म्यूजियम और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ पर है। और बस जैसे वो पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वैसा नहीं है। और आपने देखा कि हिंसा के कारण लोगों ने लोगों की जान ले ली। कितने मासूम लोग थे उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम कर रहे थे उस समय। ड्यूरिंग द डे व्हेन दिस वर

इस अटैक को कर रहे हैं तो लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों है क्यों लोग इतने वायलेंट हैं बात बात पर लोग गुस्सा करते हैं गाली देते हैं कभी एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं आखिर आजकल दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है क्यों इंसान इंसान न रहा इंसान शैतान बन गया है ज़रा सोचने वाली बात है

0: when you shake that thing, you really make the bell ring, a ding a ring ding ding.
1: इस दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, ब्यूटीफुल वीमेन एंड हैंडसम मैन एज वेल, और यह जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का जो खिताब जब लोग प्राप्त करते हैं, सो दे फील सो प्राउड, देयर इज अ फील गुड फैक्टर. अगर क्या आप में से कुछ लोग हैं जो मिस्टर मॉरिशस या मिस मॉरिशस बनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा हम उससे उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे. दुनिया में जब आप लोग को भगवान ने आपको जब भगवान आपको इतनी खूबसूरती देती है तो उसका जो इस्तेमाल भी करना चाहिए. यस, ऐश्वर्या राय, जो ऐश्वर्या राय बच्चन है आज, वो पहले बनी थी मिस इंडिया एंड मिस यूनिवर्स भी. और ऐश्वर्या बच्चन का जन्म हुआ 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में, और उनका बचपन मुख्य रूप से मुंबई में बीता. वे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बाद में मॉडलिंग करने लगी. 1994 की प्रतियोगिता में

ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सुष्मिता सेन के बाद प्रथम रनर अप रही। उसके बाद उन्हें भारत की ओर से मिस वर्ल्ड 1994 प्रतियोगिता में भेज दिया गया। यह प्रतियोगिता 19 नवंबर 1994 को सन सिटी साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई थी। दुनिया के अलग अलग देश से कई प्रतियोगिताओं के बीच ऐश्वर्या राय ने अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, सुंदरता और सवालों के जवाब से निर्णायकों को प्रभावित किया। ऐश्वर्या राय की जीत अंतिम चरण में उनके जीवन और समाज से जुड़े सवाल पूछे गए और उनके जवाबों में उन्होंने दया, मानवीयता और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे विचारों पर जोर दिया। अतः ऐश्वर्या राय बनी मिस वर्ल्ड 1994 का ताज पहनाया गया। यस, शी डिड इट। वे भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड विजेता बनी। उनसे पहले रेता फरिया ने 1966 में यह खिताब जीता था। और 1994 में भारत के सौंदर्य प्रतियोगिता इतिहास में बेहद खास रहा, क्योंकि उसी वर्ष सुष्मिता सेन बनी मिस यूनिवर्स 1994 और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड 1994। इसके बाद मिस वर्ल्ड बनने के लिए ऐश्वर्या राय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने मॉडलिंग के साथ फिल्मों में कदम रखा और आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री में शामिल हुई। सो बॉलीवुड के जो सितारे हैं, बहुत अच्छे सितारे हैं, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स 1994 एंड ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड 1994। जैसे मान जी आप एक स्टेज पर चल रहे हैं, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आप कैटवॉक करें और लोग कहते हैं एंड द मिस यूनिवर्स इज ये नाम या मिस्टर यूनिवर्स इज ये नाम। सो जब किसी को यह खिताब प्राप्त होता है टू बी मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। जस्ट इमेजिन कि सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और सभी जो कैमरा है आप पर सेंटर्ड है एंड सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपको आपका वाहवाही कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर द मिस यूनिवर्स और यू आर द मिस वर्ल्ड। सो कैसा लगेगा आपको? जस्ट इमेजिन थोड़े समय के लिए बस सोचिए कि आप स्टेज पर चल रहे हैं, आपने सुंदर कपड़े पहने हैं और जो है संगीत चल रहा है और संगीत पर जज जो है, जूरी जो है अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं नाउ द टाइम हैज कम एंड विल नो द नेम ऑफ द विनर एंड द नेम ऑफ द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स इज, और आपका नाम आ जाता है। क्या बात है, जस्ट इमेजिन दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। शायद एक दिन आपका भी मौका आएगा, आपको भी ये मौका मिल जाए एक दिन मिस्टर या मिस यूनिवर्स बनने के लिए। अगर आपको ये खिताब मिल जाता है तो हमें भूलिएगा मत, ज़रूर। काश ये बात सच हो जाए, एक दिन आप मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बन जाए।

सनसनी गली जी हाँ संगीत के साथ ही ऐसा भी होता है। बहुत सनसनी खबर का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। शाम के 3 बजे से हमारा साथ देने के शुक्रिया करम मेहरबानी। शाम के 4 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजलें। हमारी आपकी मुलाकात होगी शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक, 6 से 7 बजे तक नई सोच, 7 से रात के 9 बजे तक होगा दिलों की आवाज़, रात के 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी का। So I'll be with you this evening and the whole night. जी हाँ, शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक I'll be on Radio Mauritius and Radio Manoranjan just for you. अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार, love you all. See you at 6 PM on Radio Manoranjan. Bye bye, take care, God bless.

0: टाइम चेक शाम के 4 बज रहे हैं आप सुनते हैं अभी से संक्षिप्त समाचार अभी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है कल रात एक दुखद घटना घटी इस बार खिशौनू में 19 वर्षीय भूवेश दुलब जिन्हें आयुष नाम से भी जाना जाता था का शव इलाके के एक झील में पाया गया पुलिस रिपोर्ट के अनुसार GIPM की सहायता से टीमों ने रात के लगभग 8 बजे कार्रवाई शुरू की खोज अभियान रात के 10:10 पर शुरू हुआ और रात के 11:20 पर शव को बाहर निकाले जाने के साथ समाप्त हुआ आपको बता दें सेंचुबे के रहने वाले और सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत इस युवा के शव को बाद में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया मौत के सटीक कारणों का पता लगाने की दिशा में पोस्टमार्टम भी किया गया

0: रविवार तड़के ब्लैक रिवर रोड पर बोंबू की ओर सैमोंटे के पास एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई, जिसमें 27 वर्षीय एक युवक की जान चली गई। तीन लोगों को ले जा रहा एक 4x4 वाहन एक बिजली के खंभे से बड़ी जोर से जा टकराया। पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके वाहन की छत इस दुर्घटना के भयानक प्रभाव को दर्शाती है। खबरों के अनुसार वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, तभी उसने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद वाहन खंभे से जा टकराए। सरकार ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी कि नाइस को फिर से शुरू किया। नाइस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य युवाओं में नागरिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। साल 2012 में शुरू किए जाने और बाद में रोक दिए जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अब एक पायलट संस्करण के साथ वापस आया है। ग्रेड 8 के 200 छात्र नागरिक शिक्षा, अनुशासन, नेतृत्व, सुरक्षा और सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ी 14 दिनों की गतिविधियों में भाग लेंगे। इसमें नागरिक समाज ने की सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि दक्षिण लबनान में तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हिजबुल्ला ने हमला कर दिया। इजरायली सेना ने इसे युद्ध विराम और समझौतों का उल्लंघन करार दिया। हालांकि इस हमले में किसी भी इजरायली सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। और उधर शनिवार को कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में सीएसआरआई का स्काईपॉक हवाई अड्डे के पास एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

4:10 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ में। आप सभी को इतना ही हम कहेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी फ़िक्र बहुत ज़रूरी होती है, कभी किसी से मोहब्बत होती है, कभी किसी के करीब जाने का दिल करता है, कभी किसी को याद करने का दिल करता है, और कभी कभी एहसास होता है कि मोहब्बत आंखों से थोड़ा नरम भी की जा सकती है। कहते हैं कि मोहब्बत अगर एहसास हो जाए कि मोहब्बत असली में है क्या, तो एहसास होगा कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें मोहब्बत तो होती है, बट उन्हें एहसास जगाने के लिए सिर्फ इतना ही कहना होता है ये हमारे बच्चे हैं। वहीं पर जहाँ पर हमें किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत होती है जिसको हमने बहुत सालों से नहीं देखा होता, पर फिर भी उसके लिए कहीं ना कहीं दिल धड़क रहा होता है, और वहीं पर कभी हम अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हैं, कभी अपने पति से करते हैं, कभी अपने माँ बाप से करते हैं, तो मोहब्बत के रंग अलग अलग हैं, पर मोहब्बत एक ही है, चाहे वो दोस्त के लिए हो,

चाहें किसी खास शख्स के लिए हो। तो मैं हूँ आपके साथ पूनम और आपको इतना ही कहूँगी, आप फिल्मी गज़लों के साथ जुड़े हुए हैं इस समय और फिल्मी गज़लें हमेशा कुछ ऐसी गज़लें लेकर आती है जहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ी होते हैं एहसास और शायर और शायरों शायरी के साथ साथ शायरों के बहुत से ऐसे अल्फाज जिसको हम कभी भुलाना नहीं चाहते। तो इसी अल्फाजों के साथ में यहाँ से शुरू करते हैं हम फिल्मी गज़लें। इंजॉय कीजिएगा इस गज़ल को, बहुत ही प्यारी है जसवंत सिंह की आवाज़ में।

0: दोस्तों 4:21 हुए हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ और इस समय मैं साथ दे रही हूँ आपकी पूनम। एक बहुत बड़े मशहूर शायर हुए, उनका नाम है बशीर बद्र। बशीर बद्र की शायरी में मोहब्बत, बिछड़ना और रिश्तों की नज़ाकत बहुत सहज अंदाज में दिखाई देती है। उनके अल्फाज अक्सर किसी अपनी सी कहानी का एहसास देते हैं। उन्हें कहते हैं, तुम्हें खोकर भी तुमसे रिश्ता रहा, तुम्हें खोकर भी तुमसे रिश्ता रहा, दिल चुप था मगर तुम्हारा किस्सा रहा, हमने चाहा तुम्हें भूलकर मुस्कुराएं, हर मुस्कान में थोड़ा दर्द छुपा रहा। सच्ची तो है, कुछ मोहब्बतें ख़त्म कहाँ होती हैं दोस्तों, बस उनका जिक्र कम हो जाता है और फिर कभी कोई गज़ल सुनाई देती है तो वही पुराना चेहरा याद आ जाता है और ये चेहरे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक होते हैं, पर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिछड़न हो जाती है।
1: RM3 Radio.

चार बजकर 28 मिनट हुए हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी अभी हमने सुनी गजल पंकज उदास की आवाज़ में, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शायरा की जिनका नाम है सुल्ताना मेहर। सुल्ताना मेहर उर्दू की शायरा और साहित्यकार रही हैं। उनके लेखन में रिश्तों और स्त्री मन के अलग अलग एहसास देखने को मिलते हैं। लिखती हैं

0: तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, बस दिल को तुम्हारी फिक्र आज भी है। तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, बस दिल को तुम्हारी फिक्र आज भी है। बातें भले हम रोज नहीं करते, पर दुआ में तुम्हारा जिक्र आज भी है। यह एहसास शायद आपने कभी महसूस ज़रूर किया होगा। बात बंद हो जाती है, मुलाकातें बंद हो जाती हैं, लेकिन किसी का फिक्र करना कभी दिल बंद नहीं करता। दिल कहता है बस उसे याद करते रहो, हर पल याद करते रहो, और यही जो पल और यही जो फिक्र है, इसी को तो मोहब्बत का नाम दिया गया है।
1: RM3 Radio.

0: बहुत सारे शायरों की बात हम करते हैं, आप भी कई बार वो कुछ ऐसी किताबें पढ़ते हैं जहाँ पे शायरों की बात होती है और कहीं पर बात होती है मोहब्बत की, शिकायतों की, गुस्से की, शरारतों की। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसके आगे पीछे हम झूलते रहते हैं, झूमते रहते हैं और कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही हमारे बीच में एक शायरा हुई हैं, उनका नाम है शहरयार। शहरयार ने प्रेम, अकेलेपन और इंतज़ार के एहसासों को बेहद नफासत से शब्द दिए गए हैं। फिल्मी दुनिया में उनका गहरा रिश्ता रहा है। लिखते हैं, शाम आई तो फिर तेरा ख्याल आया, शाम आई तो फिर तेरा ख्याल आया, सूने कमरे में जैसे कोई सवाल आया। दरवाज़ा खुला था बहुत देर तलक, दरवाज़ा खुला था बहुत देर तलक, तुम नहीं आए बस तुम्हारा ख्याल आया। सच ही तो है, इंतज़ार भी अजीब सी चीज़ होती है। हमें मालूम होता है शायद कोई नहीं आएगा, फिर भी दिल किसी आहट पर एक बार ज़रूर ठहर जाता है और ठहरते हुए सिर्फ इतना कहता है, काश ये ठहराव को कोई अपने कागज़ पर लिख ले, इस सोच को कोई कागज़ पर लिख ले, इस बोलने को कोई कागज़ पर लिख ले। जिसने कागज़ पर लिख लिया, एक ना एक दिन कोई पढ़ने वाला ज़रूर आएगा।
1: RM3 Radio.

0: 4:43 हुए हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी शायरा की जिनका नाम है रफिया शबनम। अबधी उर्दू के लिए लेखिका हैं, आलोचक भी रही हैं और इतनी प्यारी शायरा हैं कि जब वो लिखती हैं तो कहते हैं दिल को घोल कर रख देती हैं। लिखती हैं, मेरे हिस्से की हंसी तुम रख लेना, अपनी थोड़ी सी उदासी मुझे दे देना। मेरे हिस्से की हंसी तुम रख लेना, अपनी थोड़ी सी उदासी मुझे दे देना। रिश्ता है तो हिसाब कैसा अपना, तुम थक जाओ कभी मेरा हाथ ले लेना। मुझे लगता है प्यार का एक बहुत ही प्यारा सा रूप होता है परवाह, जहां हम सामने वाले की खुशी में शामिल हों और उसके मुश्किल वक्त में बस उसका हाथ पकड़कर खड़े हो जाएं और एहसास दिलाएं कि हम हैं तेरे साथ। क्यों परेशान होना, क्यों तकलीफ़ में जाना, यही तो शायरी और शायर की बात होती है। चाहे वो लेखिका हो, लेखक हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो शायरा हो, उनकी बात ही कुछ अलग होती है। और जब उनकी बात होती है तो वहाँ पर निकलते हैं ऐसे नज़में, ऐसी गज़लें जिसकी बात ही अलग सी और निराली सी होती है। बहुत ही प्यारी सी नज़्म आप सभी के लिए जुनैद अख्तर की आवाज़ में।
1: RM3 Radio.

तो दोस्तों आज कभी मोहब्बत की बात हुई, कभी फिक्र की, कभी इंतज़ार ने दिल छुआ, तो कभी कोई पुरानी याद आँखों के सामने आ गई। ज़िंदगी में हर रिश्ता हमारे साथ हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो अच्छे एहसास हैं वो हमें साथ देते रहते हैं, साथ संभाल के रखने पड़ते हैं, साथ उनके चलना पड़ता है, वही एहसास जो होते हैं वही ज़िंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता, अनमोल कहते हैं जायदाद, अनमोल पैसा। पैसे की भी वैल्यू उसके सामने कुछ नहीं होती है जो यादों की वैल्यू होती है,

पर हम यादों को बहुत ही लाइट लेते हैं और पैसे को और बाकी चीज़ों को वैल्यू देते हैं। तो मैं थी आपके साथ पूनम, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, पर मेरे बाद आपको साथ मिलेगा शीतल जी का, और मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी, बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे बहुत ही ऐसी बातें होती हैं जो दुनिया में अनोखी होती हैं, और शीतल जी भी जो प्रोग्राम लेकर आती हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आती हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने उन लोगों का ख्याल रखें जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ हमेशा आप रहना चाहते हैं। तो यही मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखें, यही मोहब्बत उनके साथ भी रखें जिनकी आपको याद हमेशा सताती है। तो मैं थी आपके साथ पूनम, इजाजत लूंगी और मिलते हैं अगले हफ्ते। RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: टाइम चेक, शाम के 5 बज रहे हैं।
5: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।

अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो उन्होंने कुछ 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों में अनगिनत एक्ट्रेस उनके ऑपोजिट नजर आए। आज यादें प्रोग्राम में उन अनगिनत एक्ट्रेस से जुड़े कुछ गाने हम इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। वहीदा रहमान। वहीदा रहमान हालांकि अमिताभ बच्चन से उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन अमिताभ बच्चन की दिलो ख्वाहिश थी, दिलो तमन्ना रही वहीदा रहमान के ऑपोजिट काम कर सके।

अपने दौर के बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस रही, बेहद ही हसीन सायरा बानू। सायरा बानू ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया फिल्म जमीर में, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही। संगीतकार रहे इस फिल्म के सपन चक्र

मोती गाने को लिखा साहिर लुधियानवी ने, प्लेबैक सिंगर इस गाने में रहे किशोर कुमार और आशा भोसले। तुम भी चलो हम भी चले इस खूबसूरत सफर में अमिताभ बच्चन और सायरा बानू।

अमिताभ बच्चन एक बेहद ही टैलेंटेड और सुलझे हुए एक्टर रहे और अपने हर एक किरदार को बड़े खासियत और सफलता से वे पेश करते आए थे। फिल्म सत्ते पे सत्ता में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर निभाया। एक पारिवारिक कैरेक्टर के साथ साथ उन्होंने प्यार मोहब्बत के फलसफे को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। हेमा मालिनी के ऑपोजिट

अनगिनत एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के अपोजिट उनके फिल्मों में नजर आए और उनमें से एक बेहद ही सुलझे हुए टैलेंटेड एक्ट्रेस रही परवीन बाबी। कई फिल्मों में इन दोनों ने एक साथ काम किया और उनमें से एक रही कालिया तुम साथ हो जब अपने। फिल्म कालिया आई थी 1981 में और इस खूबसूरत गाने को प्लेबैक दिया आशा जी और किशोर कुमार ने। आर डी बर्मन के खूबसूरत संगीत निर्देशन में इस गाने को मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा।

एक वर्सटाइल और बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने अपना एक गहरा छाप हिंदी सिनेमा पर छोड़ दिया। हालांकि आज उन्होंने हिंदी सिनेमा से कुछ दूरी बना ली है, लेकिन आज भी उनके फिल्मों से लोग बेहद ही प्रेरित होते हैं। और वो रही राखी। राखी और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम कई फिल्मों में किए, वहीं कभी कभी भी मौजूद रही। लता जी और मुकेश जी की आवाज में संगीतकार खयाम साहब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अल्फाज को लिखने वाले रहे साहिर लुधियानवी।

one of the most glamorous actresses of her time, known as a fashion icon and a sex symbol. Hindi cinema mein mani gayi one of the finest actress, wo rahi Zeena Tamman. Zeena Tamman ne bhi angynat filmon mein Amitabh Bachchan ke saath kaam kiya, jinmein se Dawn, Lawaris bhi rahe. जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है लता जी और किशोर कुमार की आवाज में प्लेबैक उन्होंने दिया जीना तमान और अमिताभ बच्चन के लिए

A timeless magic from the film Farar. गाना रहा मैं प्यासा तुम सावन. शर्मिला टैगोर के ऑपोजिट इस गाने में अमिताभ बच्चन, कल्याण जी आनंद जी ने बड़ी खूबसूरती से इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया. गाने को लिखा राजेंद्र

सुष्मिता पाटिल दुर्भाग्यवश आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फिल्मों के जरिए हम उन्हें याद करते हैं। सुष्मिता पाटिल ने भी अमिताभ बच्चन के साथ उनमें से एक सुपरहिट फिल्म शक्ति 1982 सन 1982 में फिल्म शक्ति आई थी। लता जी और किशोर कुमार ने प्लेबैक दिया अमिताभ बच्चन और सुष्मिता पाटिल के लिए। जाने कैसे कब कहां

तौर से लेकर आज तक ये गाना एक बहुत ही मशहूर गाना है, जो कि रहा फिल्म याराना का गाना। फिल्म याराना आई थी 1981 में, 1981 में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई नीतू सिंह।

इलेक्ट्रीफाइंग एंट्री ऑफ किमी काटकर। किमी काटकर नजर आई अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट। ये एक धमाकेदार एंट्री रही सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति के भी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने में बड़ी खासियत से संगीत दिया और गाने को आनंद बख्शी ने लिखा। द ग्रेट किमी काटकर और अमिताभ बच्चन फिल्म रही हम।

अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार रहे जो कि हर एक कैरेक्टर में अपने आप को बड़ी खासियत से ढाल लेते थे और हर एक एक्ट्रेस के साथ बड़ी आसानी से काम कर लेते थे। नई दौर की श्रीदेवी के साथ वे नजर आए फिल्म आखिरी रास्ता में। मोहम्मद अजीज ने उनके लिए आवाज दी और गाना रहा गोरी का साजन, जहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया और वही अल्फाज रहे आनंद बख्शी के।

रविवार 6 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोरे, रपिदाश ने मेडन कप 2026 अपने नाम किया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है जिसे ब्लू रिबन भी कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शॉ डू मॉस में मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। सैमाउते में आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। ब्लैक रिवर के रास्ते पर बॉम्बू की तरफ जाते हुए एक गाड़ी सड़क से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय गाड़ी चालक की हो गई है मौत। कुद्दो में आज यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी कि यूसी मास के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैथमेटिक्स की खास चर्चा रही। बच्चे गणित यानी कि मैथमेटिक्स की अपनी रफ्तार परखने के लिए एकत्र हुए जहां उनकी मेहनत और लगन को खास रूप से सहारा गया। एलनीनो के असर से एल साल्वाडोर सन 1971 के बाद से सबसे बदतर सूखे का सामना कर रहा है। इस स्थिति का प्रभाव मुख्य रूप से छोटे किसानों पर पड़ रहा है और सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। और नेपाल में पहाड़ी जिले गोरखा में आज सुबह तेरांग नदी में बाढ़ उतर आई। चार घर और एक सस्पेंशन ब्रिज बह गई।

0: नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं इस 6 सितंबर की सबसे बड़ी गतिविधि के साथ। रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोड़े रैपिडाश ने मेडन कप 2026 अपने नाम किया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है जिसे ब्लू रिबन कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शोंडुमाउस समय मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। आम घुड़दौड़ प्रेमियों के अलावा मेडन कप ने ऐसे मॉरिशनों को भी आकर्षित किया है। इस क्लासिक रेस का आनंद उठाने से चुकना नहीं चाहते थे। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि सैमाउते में आज सुबह एक गंभीर सड़क का हादसा पेश आया। ब्लैक रिवर के रास्ते पर बोंबू की तरफ जाते हुए एक गाड़ी सड़क से हटकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में 27 वर्षीय गाड़ी चालक की मौत हो गई। गाड़ी में सवार अन्य लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। क्रिस्टेल लुभास की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
1: रविवार की सुबह तड़के ही कनॉट में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना पेश आई। वाहन में बस यही बच गए हैं। वाहन बुरी तरह से नुकसानग्रस्त। ऊपरी वाले हिस्से से ये पता चलता है कि दुर्घटना की गंभीरता किस हद तक थी। कनॉट में वाहन के शेष बचे हिस्से भयानक दुर्घटना के दृश्य दर्शाते हैं। पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक संकेतों के मुताबिक वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जब वाहन पर से उसका नियंत्रण खो बैठा। गन्ने के खेत में बिजली के खंभे से टक्कर हुई। दुर्भाग्यवश दुर्घटना जानलेवा साबित हुई। 27 वर्षीय माचे होज ने स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अन्य दो लोग घायल हुए, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की जाँच जारी है।
0: अपराध के बाद सजा काट रहे कैदियों को सिर्फ दंड देना ही नहीं बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में भी शामिल होने के लिए, दोबारा शामिल होने के लिए और बहुत ही ज़रूरी है। इसी मानवीय सोच को बढ़ावा देते हुए पिछवाड़े के कैद खाने में कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अदिति अवतार की रिपोर्ट।
2: पिची वैजे के कैदखाने में कैदी मुर्गी पालन, बागबानी, मेटल के काम और मार्बल बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इन कार्यों के माध्यम से उन्हें न सिर्फ कौशल सीखने का मौका मिलता है बल्कि काम के प्रति अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुण भी उनमें उजागर होते हैं। इस कैद खाने में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की पहल में कैदियों को शामिल किया गया है। वे खुद के उपभोग के लिए सब्जियां उगाते हैं और रोटी तक तैयार करते हैं।
3: Nous produisons environ 3000 du pain pour trois prisons, Chibézé, Pointe-Sable, Grand-Rivière et puis Richieux, quotidiennement. Et puis nous avons une pâtisserie ici, que nous faisons gâteau pour ces trois prisons qui m'ont mentionné là. Ben détenu qui a un droit à ce gâteau, aux casse. The property, because of travail. In the 6 months, we started to start activity in Marble Making Lab. And the contractor who has all the raw materials, he gave us. We made the marble, we took it, and then we paid the detainees. The idea is that we need sufficient for the alimentation. Everyone detainees needs to work here. No one can say that.
2: पुनर्वास प्रोग्रामों को मात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखा गया है। इसके साथ ही कैदियों को व्यक्तिगत विकास, व्यवहार और समाज में दोबारा घुलने मिलने के लिए तैयार किया जाता है।
4: हमने के एक सेंटर रिहैबिलिटेशन भी बा है। सेंटर रिहैबिलिटेशन में हमने एसएमई के कोर्स देवा थे जा, ताकि वो लोग जब लिख ली तो वो लोग जनियन जा कैसे गो बिजनेस करियन जा। और ये सब करके हमने फिर भी वो लोग के लाइफ स्किल मैनेजमेंट के कोर्स देवा थे जा, ताकि वो लोग के जनियन जा कैसे अपन एंगर मैनेज करे के, ताकि खिशी आयन से नहीं ढेर सोचते में। और ये जब वो लोग निकलियन जा तो वो लोग सकियन जा काल अपन काम करे, और कहूँ भी सकियन जा जितना फोमाशों दे वे जा वो लोग सकियन जा काल वो लोग के वो काम मिले सकियन से नीमन से काम करे।
2: कई गैर सरकारी संगठन कैदियों को जरूरी समर्थन देने के लिए सक्रिय हैं। इस दिशा में वे मुख्य रूप से मानवीय विचारधारा अपनाते हैं।
5: यहाँ हमने एक ह्यूमन अप्रोच से काम करी रहा सर कैदी लोग संगे।

0: में ओ लोग अपन अपनापन जो बातें है फील कर महसूस कर हालांकि समाज जो जो नजरिया से कैदी जो जो जो जेल से आयल हवन सा जो प्रकार से जो कारित से देखे लन सा ओ लोग के एगो जो सिपो नहीं मिलेला तो हमनी हमनी के जो सिपो दे ला सा ओ लोग के तो जैसे फासिल रहेला रिहैबिलिटेशन के जमे फैन से सोसाइटी में जयन सा काम करियन सा और ये समाज में कंट्रीब्यूट करियन सा
1: मैं beaucoup को avec qui nous était donc self development manco SME mais aussi gagne mon certificat mais apprend beaucoup mais mon connaît moi pour bien réaliser vivre de haut mon carré réinsérer aujourd'hui mon compétence mon carré développer mon business puis cela on travaille dans section la ferme dans prison mon connaît moi pour gérer un poultry un animal farm mais après ça mon apprend mais mon prêt pour vivre une vie et une jeune responsable depuis mon enfance me discipliner vivre avec principe
2: कैदखाने में की जाने वाली ऐसी कोशिशें ये साबित करती हैं कि सजा का उद्देश्य मात्र दंड देना नहीं बल्कि व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर भविष्य की तरफ लौटने का अवसर देना भी हो सकता है। ऐसा समर्थन समाज में कैदियों के सफल पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
3: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कुड्डो में आज यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मेंटल अरिथमेटिक सिस्टम यानी कि यूसी मासा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैथमेटिक्स की खास चर्चा रही। बच्चे गणित की अपनी रफ्तार परखने के लिए एकत्र हुए जहां उनकी मेहनत और लगन को खास सहारा गया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल मॉरिशस के लिए भारतीय उप उच्चायुक्त अपर्णा गणेशन और यूसीमास मॉरिशस की टीम के जिम्मेवार आनंदा देसाई के अधिकारी मौजूद हुए। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मॉरिशस के व्यापारिक और सामाजिक स्वरूप को आकार देने वाले फेरी वालों के सफर पर भी नजर डालते हैं जहां पर मॉरिशन लेखक फाइज हुसैन बकस ने अपनी किताब मॉशन लाफो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मॉरिशस स्ट्रीट वेंडर्स में घूम घूम कर सामान बेचने वाले व्यापारियों की उस पीढ़ी और उनकी कड़ी मेहनत हिम्मत और त्याग से भरे सफर को श्रद्धांजलि दी है। इस पुस्तक की लॉन्चिंग पिछले हफ्ते विक्टोरिया अर्बन टर्मिनल में की गई। अब चलिए हम सेकंड हैंड कपड़ों के जरिए चीज़ों को एक नया स्वरूप देने की अवधारणा पर बात करते हैं जहां पर ऐसे कपड़े ऐसे ग्राहकों को तेज़ी से पसंद आ रहे हैं और जो अपने इस्तेमाल की आदतों और सस्टेनेबल उपयोग को लेकर जागरूक हैं। तमागे में हाल ही में खुले ओपन हाउस बुटीक में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि एल नीनो के असर से एल साल्वाडोर सन 1971 के बाद से सबसे बदतर सूखे का सामना कर रहा है। इस स्थिति का प्रभाव मुख्य रूप से छोटे किसानों पर पड़ रहा है और सरकार को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। और जिस तरह से आज हमने सुर्खियों में इस बात की पुष्टि की है उनका उल्लेख किया है कि नेपाल के पहाड़ी जिले गोरखा में रविवार सुबह थेरांग नदी में बाढ़ उतर आई। इसके बाद प्रशासन ने बूढ़ी गंडकी नदी के बेसिन में अलर्ट जारी किया। बार में चार घर और एक सस्पेंशन ब्रिज बह गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 26 अगस्त को आई बाढ़ में अब तक 1,344 शव मिल चुके हैं जबकि करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 400 अरब नेपाली रुपए के नुकसान की शुरुआती अनुमान है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: पिछले महीने चीन और नेपाल के बीच स्थित सरहद पर हिमालयी इलाके में जो विनाशकारी बाढ़ उतर आई थी उसमें तिब्बत में मरने वालों की संख्या 43 तक पहुंच गई है जबकि 519 लोग अभी भी लापता है। नेपाली राहत कर्मियों

0: ने एक 64 वर्षीय महिला को कीचड़ के मलबे तले से जीवित निकाला। भयानक बाढ़ उतरने के 10 दिन बाद ऐसा किया गया, महिला को बचा लिया गया। ऐसी भी खबर है कि कई दिनों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद लू हाइटो परिवार ने राहत की सांस ली जब नेपाल में एक सुरंग से चीनी पुरुष को निकाला गया। राहत कर्मियों ने बाढ़ के 10 दिन बाद 225 मीटर के एक हाइड्रो पावर सुरंग से उसे बाहर निकाला और उसे हेलीकॉप्टर से हटाया गया, अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच राहत कार्य जारी है, मलबों को हटाया जा रहा है और जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश बरकरार है। इस बीच बोतेकोशी बाढ़ के बाद नेपाल की ओर से प्राइम मिनिस्टर्स डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए डिजिटल दान के एक वृहद अभियान की शुरुआत की गई है। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह क्यूआर पेमेंट्स और ग्लोबल कार्ड नेटवर्क्स आपातकालीन स्थिति में दान करने के संबंध में विकसित हो रहा है।
1: और ईरान ने हमस जल मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और की कोशिश कर रहे एक जहाज पर हमला किया। और दुनिया के अन्य खबर अदिति अवतार के साथ।
2: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने आज हॉर्मुज जलमार्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक बिना क्रू के जहाज पर हमला किया। ईरान का कहना है कि ये एक जवाबी हमला था क्योंकि इससे पहले अमेरिकी ताकतों ने 3 ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। ईरान ने एक बार फिर धमकी दी है कि बिना अनुमति के हॉर्मुज जलमार्ग में प्रवेश करने वाले जहाजों को नतीजा भुगतना होगा। इसराइल दक्षिणी लबनान पर हमले जारी रख रहा है, निशाना हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया है। इसराइल का कहना है कि युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए हिजबुल्ला ने उसकी सेना के सिक्योरिटी जोन पर ड्रोन हमले किए, जवाब में हिजबुल्ला के हथियार भंडारों को नष्ट किया गया। यमन में अर्ध सरकारी बलों और हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है, लाखों परिवार घर बार छोड़कर भागने की फिराक में हैं। बड़ी संख्या में लोग ताइज शहर के ह्यूमैनिटेरियन कैंप में पनाह लेने पहुंच रहे हैं। लोगों के पास न तो रहने के लिए उचित व्यवस्था है और न ही खाने पीने जैसे मूलभूत सामान। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की गई है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक खास बैठक लगाई। ये यूक्रेन रशिया के बीच संघर्ष खत्म करने की एक और नई पहल रही। ये बैठक 3 घंटों से ज्यादा समय तक चली। दोनों पक्षों के अनुसार बातचीत सकारात्मक रही लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। इसके बाद अब अमेरिकी दूत राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला मिस वर्ल्ड 2026 बनी है। इस प्रतियोगिता का फाइनल कल वियतनाम में लगा। मोला एक अंग्रेजी अध्यापिका है और वॉइसेस ऑफ टुमारो नामक एनजीओ की संस्थापिका भी हैं। फर्स्ट रनर अप स्पेन की एलिजाबेथ रेन्स रही और तीसरा स्थान मलेशिया की तनुसिया चेती को गया।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि रामेश्वर गजाधर अस्तबल के घोड़े रैपिडैश ने मेडन कप 2026 अपने नाम कर दिया है। ये मॉरिशस में घुड़दौड़ की सबसे प्रतिष्ठित रेस है जिसे ब्लू रिबन कहा जाता है। इसे देखने के लिए आज शोंडमॉस में मॉरिशनों की भारी भीड़ लगी। आम घुड़दौड़ प्रेमियों के अलावा मेडन कप ने ऐसे मॉरिशनों को भी आकर्षित किया। इस क्लासिक रेस का आनंद उठाने से चूकना नहीं चाहते थे। काविंता पेसर की रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
3: शादीमास में आज जोश से भरा माहौल रहा जहां घुड़दौड़ कैलेंडर की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लासिक रेस आयोजित हुई। नियमित रूप से घुड़दौड़ देखने आने वाले दर्शक इस मौके को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। वहीं दूसरे लोगों के लिए मेडन कप हमारे घुड़दौड़ मैदान और यहां के खास माहौल को करीब से देखने का एक अच्छा मौका है।
4: La journée, je sais que moi je te connais, Médène, c'est un grand jour.

0: nous Mauriciens, quand nous vivons en famille, nous profitons de l'occasion et en même temps nous vivons un bon moment en famille aussi.
1: Moi, une fois par an, juste pour Médène, je suis moi.
2: Chaque année, vous venez pour Médène, vous trouvez l'ambiance insensée ou bien les respirer?
1: Non, je ne réponds pas. Je suis un ici en bas. C'est une dame, mais je réponds là.
3: Si ça cause Médène, mais nous pas venir ça que samedi.
4: Champ de Mars qui Médène, mais l'agbag, her kisi ke liye kuch na kuch maujoud hai. यहाँ मशहूर बिरयानी की काफी मांग है। अच्छे कारोबार की उम्मीद में कई फेरी वाले भी यहाँ पहुँचे। दोपहर 3:20 पर बड़ी क्लासिक रेस की शुरुआत के लिए दर्शक ट्रैक के और करीब पहुंचे। पूरी रेस के दौरान शानदार स्थिति बनाए रखते हुए रैपिडास, जिसे पियर कोन उफ ने दौराया, ने जीत हासिल की और रमेश्वर गजाधर के अस्तबल को विजेता बनाया।
5: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और खासकर पूर्वीय तथा ऊंचे इलाके पर आज रात बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों पर कोहरा भी छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, मास्कारेंस खासकर दक्षिण पूर्व की ओर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन इस मंगलवार 8 सितंबर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। बादलों का एक झुंड होने की वजह से बरसाती मौसम की शुरुआत होगी मंगलवार से और साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी बहेंगी। हवा पूर्व की ओर से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और साथ ही साथ 3 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान में गिरावट नोट की जाएगी। अगर तापमान के बारे में बात करें आज के लिए, तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:02 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:13 पर।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये संक्षिप्त ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आइए शोक समाचार सुनते हैं। फ्लोम्बायो स्ट्रेटा नोस दे काना, रिवियरा दू रेम्पोर्ट में फ्लोम्बायो स्ट्रेटा नोस दे काना, रिवियरा दू रेम्पोर्ट में 69 साल की 69 years old के

श्री राजकुमार अंगकोर, श्री राजकुमार अंगकोर जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनसुया अंगकोर के घर फ्लोंबायो स्ट्रीट नजदीकाना रेवे जोरांपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरीव किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। कौ गुलबा शुमे ग्रीये में 52 साल के 52 years old के श्री गणेशन अपासोमी जिन्हें सब लोग सूर्यन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर कौ गुलबा शुमे ग्रीये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवेडी गैली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। रॉयल रोड सेंचुबे में 19 साल के 19 years old के श्री भुवेश डुलप जिन्हें सब लोग आयुष के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड सेंचुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचुबे सोंगुली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉयल रोड खुशतिया में जो कलाश के पास है 72 years old की श्रीमती हवंती चमन जिन्हें सब लोग राम भजन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री अर्जुन चमन के घर रॉयल रोड गुश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। अलेजाक लेस्कालिये में 69 years old की श्री नारायण दत्त दलू जिन्हें सब लोग अमरनाथ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री केवल दलू के घर अलेजाक लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकारांग लेस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। दामाओ लेन शामुनी में 56 years old की कुमारी सुचित्रा दामाओ जिन्हें सब लोग तिसिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके भाई श्री विद्यानंद दामाओ के घर दामाओ लेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 55 years old की कुमारी शांता उरिया जिन्हें सब लोग शांता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी बहन कुमारी संगीता उरिया के घर अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासे में 61 years old के श्री बालाकृष्णा मुकुल जिन्हें सब लोग वासु के नाम से भी जानते थे और जो कालीमाए रोड पालमा के भी निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे लाशापेल ऑन एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। लाबुदने गली मेबर्ग में 89 years old की श्रीमती महित्री तिलक पैदाइशी नाम तिलवा और जिन्हें सब लोग दादी मानती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी मंगलवार 8 सितंबर को दिन के 1 बजे उन्हीं के घर लाबुदने गली मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबू मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 8 सितंबर 2026 एट 1 PM। इन सभी शुग्रस्त परिवारों के प्रति

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so.
4: 94.6 98.2 FM पर ये है और RM3 रेडियो मनोरंजन MBC का म्यूजिकल एंटरटेनिंग रेडियो चैनल। स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त अजय प्रताप सिंह सितारू का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, नई सोच कार्यक्रम अभी से लेकर रात के 7 बजे तक, 7 से 9 बजे तक दिलों की आवाज़, और 9 बजे से 9 बजे तक दिलों की आवाज़, और 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी तड़का। सभी बात बाकी है, रात बाकी है, पर अभी से लेकर 7 बजे तक कुछ फिलोसॉफिकल सॉन्ग, कुछ भावगीत नई सोच कार्यक्रम में। सचमुच जिंदगी हर कदम एक जंग है, और जंग में आपको जीतना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, करेज के साथ आपको आगे बढ़ना है और इस जंग को जीतना है। और यहाँ पर सभी लोग खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, पर खुशियाँ हमारे अंदर ही है। अगर हम मन से, दिल से खुश है, तब हम औरों को खुश कर सकते हैं। सो हमेशा खुश रहिए, जिंदगी को जो है नए सिरे से देखिए, परेशान ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए। इसी का नाम इंसानियत है।

वाकई जिंदगी खूबसूरत है जीने के लिए, पर जीने का अंदाज थोड़ा सा बदलना चाहिए। और उन लोगों से मिलिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका कदर करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको चाहते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और दोस्तों में से कुछ दोस्त आपको बहुत पसंद करते हैं। सो उन बातों को याद कीजिए, उन लोगों से मिलिए जिनसे आपको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। और ज़िंदगी में रोटी कपड़ा और मकान अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और इसमें थोड़ा सा प्यार मिल जाए अपनों का तो ज़िंदगी वाकई खूबसूरत बन जाती है।

इंसान कभी कभी बहुत कुछ सोचता है पर जो वो सोचता है वो तो होता नहीं, इसीलिए बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। जो कुछ होना है वो तो होकर रहेगा। होनी को कोई रोक पाया है जो आज रोक पाएगा? होनी हर हाल में होकर रहती है। सो सोच कर समय क्यों गंवाएं, जो होना है होने दीजिए। आप खूब मजे कीजिए, जिंदगी जी भर कीजिए।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: यह नई सोच कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इन भावगीतों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। It's time for entertainment now. Unlimited fun, musty and music. रात के 7:03 94.5/698.2 FM पर ये है ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। एक बार फिर स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। संडे की शाम संडे 6 September 2026 अभी से लेकर रात के 9 बजे तक दिलों की आवाज, यस डांस एंड फॉर स्पीड पर ढला म्यूजिक डिस्को सॉन्ग्स 4028085 पर 4028070 यस 4020 पर आप फोन करके अपनों के नाम गीत मांग सकते हैं। बट दैट शुड बी सॉन्ग्स एंड फॉर्स म्यूजिक और राइट डांस म्यूजिक। सो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल सफर को एक बहुत ही लाजवाब गीत के साथ। दिलबर दिलबर फिल्म सिर्फ तुम से लेगा ये गाना और ये गाना खासम खास सभी रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम जो हमें सुन रहे बहुत प्यार के साथ। हियर वी गो दिलबर दिलबर।

दिल पर दिल पर जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गाना था I hope you enjoyed it next is Made in India Best of Alisha Alisha Chinna Baby Doll Alisha की आवाज और ये प्यारा सा गीत हम चलेंगे Zainab जी के नाम सभी मोसाहिब परिवार के लिए Phoenix से हैं Hi sweet and lovely Rihanna Rihanna Hassan Ali from Phoenix This is for you Anjunan को ये गीत आपके नाम आपकी मामा और आपके हबी के नाम ये गीत हम चलाएंगे चंपा और देविका राम गतिया के नाम उनके यहाँ शादी है प्यारी सी बिटिया की शादी रही है ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव बेस्ट विशेस टू द न्यू कपल प्रशांत सिबालक ये गीत आपके नाम आपकी माता जी राधा आपकी पत्नी आपकी बहन शिल्पा और जीजा जी के नाम सिबालक परिवार उदय धनी राम पोस्ट हेलो जी नेक्स्ट गाना फॉर यू आपके सभी परिवार के लिए केशव अभिलक अश्विन बच्चन प्रीतम राज मिला वहीं से है रोसीदा हाईलैंड से हाय हाय आफेज स्वीट नलवी आफेज लविंग से और फातमा है न्यू ग्रोव से चलिए एक साथ सुनते प्यारा सा गाना मेड इन इंडिया You can call us, yes, 402-8070. Got the order with 070 per aapke dedication. Dilon ki awaaz. Aur Jai Pratap Singh ke saath till 9 p.m. Uske baad, raat ke 9 baje se 11 baje tak Bhojpuri dhadka.

Cha-cha. Now we come for run things on the road. See? This one I

ने बोले बूम बूम और आप में से बहुत से लोग हमारे साथ झूम रहे हैं यस अर्चना फ्लैग से प्रताप जी हम झूम रहे हैं यस वी हैविंग

वंडरफुल टाइम साथ में आपके यहाँ ग्रियाद बारबेक्यू सब चल रहा है ओह वाओ सम ग्रियाद फॉर मी एज़ वेल यस आई एम जस्ट किडिंग आइए आ जाइए नेक्स्ट सॉन्ग दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में यस दैट विल बी फ्रॉम द मूवी लज्जा आइए आ जाइए बहुत ही प्यारा सा गाना और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सब लोगों के नाम विकास नारायण चिबुग राजा स्टीव नानो श्याम मंगल प्रवीण भैरव राजमन्ना सुदेश जसवा और जिमी दुखिया के नाम स्पेशली वो जिमी दुखिया हु एंजॉय दिस सॉन्ग्स टीना दीना प्रतिमा केत रोशनी एंड बानु संजय हरिचंद की ओर से उनकी पत्नी बेटी और सब परिवार जो पिता रहते हैं कुणाल हिरीलाल की ओर से फॉर ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स एंड पूर्णिमा फोकेरा एक वायो सिमोन है उनकी बेटी दामाद साथ में माया विद्या मिसेस द्वारका के लिए बहन जी रघुनंदन बहन जी रघुबर बहन जी ओकल बहन जी विभा बंधन गीत आपके नाम भी और हमारे खास दोस्त है न्यू ग्रोव से वशिष ओझा वशिष जी बी हैप्पी कीप स्माइलिंग एंजॉय लाइफ ओके दोस्त डोंट वरी बी हैप्पी हो जाए प्यारा सा गाना आप सभी के नाम यस आइए आ जाइए पिक्चराइज़ द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस उर्मिला मटोंडकर आइए आ जाइए

आइए आ जाइए, आपका इंतजार था, सो चलिए आइए, आपका हम स्वागत करते हैं रेडियो रेडियो मनोरंजन पर 94.6 98.2 मेगाहर्ट्ज पर, दिलों की आवाज। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। बिग शॉट रेमिक्स एल्बम से लिया गया गीत वीना कुबुसामी, ये गीत आपके नाम, आपके हबी, आपके बेटे बहू, बेटी दामाद और छोटे बच्चों के लिए। सुलमा दुखेद मेबर्ग से है। हाय सुलमा, दिस गाना फॉर योर हबी, आपकी दो बेटियां और पूरे परिवार के लिए। विश्वानी बाबूलाल लाहौजा से है, उनके हबी और बच्चों के लिए। फिर रघु भाई है, फिर निधु भाई मेबर्ग से। मनीष चमीलाल, ये गीत आपके नाम, आपकी पत्नी और बच्चों के नाम। उदय धनीराम, दिस गाना फॉर यू, आपकी बेटी दामाद, बेटा बहू। प्रीतम राज जिमीरा, दिस गाना फॉर यू इन योर फैमिली। केशव अभिलक, हेलो जानकी परिवार, जानकी स्टोन, किसी परिवार के लिए। अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार के नाम। एंड आशा जानू फ्रॉम कते, जय शुभम मारती, फिर जीजाजी के लिए। वंदना कुमारी, गीत आपके नाम भी, आपके पति और बच्चों के नाम। साइलेंट की ओर से रानी और परी के लिए। संदेश की ओर से लता, शिवानी, रंजरी के लिए। सेंट थॉमस एसएस के सब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम। और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के सब स्टूडेंट्स, सब प्रोफेसर और लेक्चरर के नाम ये गीत, दो घूंट मुझे भी पिला दे। चलिए नाचते हैं, झूमते हैं, मस्ती में चूर हो जाते हैं आज की रात। इट्स पार्टी टाइम ऑन एमबीसी रेडियो।

म्यूजिक मस्ती और हंगामा रेडियो मनोरंजन पर यस लाइव एमबीसी मौका से रात के पौने आठ बज रहे एंड यू आर लिसनिंग टू द बेस्ट ऑफ म्यूजिक राइट हियर राइट नाउ धीरों की आवाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट टू योर हार्ट एज वेल नेक्स्ट गाना जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गाना तौबा तौबा यस सच ए लवली सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ भावना पंडित और ये गाना जाएगा खासम खास सेंट ओबेस एस एस के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और सभी स्टूडेंट्स के नाम विदाउट फॉरगेटिंग द एजुकेटर्स मिस्टर साजू मिस्टर पाया मिस्टर रुसाई केट प्रतिमा दीना विरापन एंड मेनी फ्रेंड्स एज वेल और आज रुसाई के बेटे की शादी है सो बेटे बहू माफ कीजिए हम माफी चाहते हैं यस सो आज शुमे गए कि रुसाल रुसाई के बेटे की शादी है सो बेटे बहू को फॉर न्यू कपल लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेज मिस्टर रुसाई आपके और सबके बेटे और बहू को ढेर सारा प्यार हमारी ओर से भी टू ऑल द रुसाई फैमिली हु इज सेलिब्रेटिंग वेडिंग टुडे सो बहुत अच्छी बात है जी हाँ जब एक शादी होती है तो परिवार पड़ता है और बहुत खुशी की बात है कि आज आप ससुर जी बने हैं जी हाँ क्या बात है सो रुसाई भाई कंग्रेचुलेशंस बधाई बधाई टू योर बेटा एंड योर बहू एज वेल और ये गीत महेश परिवार के नाम लिस्कारी से है सिमादी परिवार के नाम प्रवीण बुधन खबियरी जोंगी से है उनके मम्मी पापा और उनके पूरे परिवार के लिए यस अगला गाना यस इट्स अ वंडरफुल ट्रैक तौबा तौबा हियर वी गो लाइन खुली हुई है 4028070 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनों के नाम गीत मांग सकते हैं पर याद रहे कि इट शुड बी फॉर स्पेस डिस्को म्यूजिक पर ढले गाने ऑलराइट

तौबा तौबा धक धक जो होना है वो तो होकर रहेगा Yes, kiss me baby. अरे भाई ये हमने कह रहे गीत के बोल है Chicken from the wonderful movie गरम मसाला और ये प्यारा सा गाना हम चलेंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वंदना गुमानी फॉर योर हबी और आपके बच्चों के नाम इंदिरा चिंताराम चंदन प्रिया सलोनी अजय और पूनम चिंताराम परिवार फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया प्रीतम के उसे गीत ज्योति पूजा प्रियंका दामाद रविश सिंह और सबैरो परिवार के नाम द वेल से है टीना टीना के उसे उनकी दो बेटियां उनके पति और सब बुद्धा परिवार फ्रॉम द वेल रतन निहाल आपकी पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के नाम अब घोंबे नितिश सिटी जोरी आपकी मम्मी पापा भाई आपकी पत्नी आपके बेटे और सब सिटी जोरी परिवार के नाम चलिए एक साथ सुनते ही प्यारा सा गाना किस मी बेबी

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: पर ये है RM3 के चैनल पर चल रहा है प्रोग्राम Onion One Channel, this is MBC Radio Manoranjan. रात के 8 बज रहे हैं, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए. जी हाँ, हमारा आपका साथ रहेगा अभी रात के 11 बजे तक. बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट विल बी जिलों की आवाज़ 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी तड़का. और बेशक रात का समय है, सो बहुत से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं. थैंक यू फॉर योर फोन कॉल्स. नेक्स्ट गाना बोलो तारा रा दलेर मेहंदी के आवाज़ में गीत आप सुनेंगे. सस्सी बनमारी जी, ये गीत आपकी पत्नी, आपके बेटे विवेक, बेटे और पूरे परिवार के लिए. एंड भाई अबू वाकवा से, हेलो भाई अबू, हाउ डू यू डू. गीत आपके नाम, आपकी पत्नी और आपके बच्चों के नाम. इब्राहिम साहब पोर्टवी से है, फातिमा फ्रॉम न्यूग्रोव एंड आशा जानू फ्रॉम कॉटेज, रिहाना फ्रॉम फिनिक्स, बेन साइदा जयल और जियाद के लिए. रवि बंगारू साहब, दिस गाना फॉर यू. इंदिरा लौटन, ये गाना आपके नाम. अनिता लाल जी फ्रॉम ओदार बे, सभी ईटू परिवार के नाम. और अनिता फ्लाक से है, हेलो अनिता जी. मोन है क्वायोर से. चित्रा एंड ज्ञान विश्राम, कमला दिनू आपकी प्यारी सी बेटी आरोही. And all the people who are listening to me right now, the next gana will be for you. Bolo tararara. Abik do se line pe. I think it's Anita ji. Okay. So Anita ji, hum aapke phone call lene ki koshish kar rahe hai. Give me some time. Oh, I'm sorry. Okay, line kat gayi. Koi baat nahi. So Anita Lal ji, this gana specially for you. Bolo tararara. Aur jitne log masti kare, ghar mein party chal rahi hai, aapke yahan mehman aaye hue hai, so jam se jam takraiye, khaiye, piye, mauj kijiye aur sunniye gana tararara.

0: हाय
1: हाय हलका जवानी रात के 8:30 बज रहे हैं, दिलों की आवाज रेडियो मनोरंजन, रेडियो रेडियो मनोरंजन पर यस और 94.96 98.2 मेगाहर्ट्ज़। यस, हम आपके साथ हैं अजय प्रताप सिंह सितालू जी। हाँ, भी 11 बजे तक आपका साथ देंगे, पर दिलों की आवाज समाप्त होगा रात के 9 बजे, और 9 बजे के बाद फिर से हम उपस्थित होंगे। रेडियो मॉरिशस पर भी होगा वो प्रोग्राम, अभी जो केवल रेडियो मनोरंजन पर चल रहा है, और वो प्रोग्राम होगा भोजपुरी तर का रात के 9 से 11 बजे के बीच, जहाँ पर हम बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सरप्राइज सरप्राइज, सो यू हैव टू लिसन टू द शो टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, प्यारे प्यारे गीत चल रहा है अभी इस समय रेडियो मनोरंजन पर 94.6 and 98.2 FM पर। फीलिंग हॉट हॉट हॉट ये गाना सुनना चाहा है भाई अशोक फ्रॉम प्लान मायो। हाय अशोक, अशोक इज ए डॉक्टर एंड ही लाइक्स फॉस म्यूजिक। डॉक्टर अशोक वेलकम, आपका सुस्वागत, आपको सुस्वागत हम कहते हैं। डॉक्टर अशोक, दिस गाना फॉर यू, फॉर योर बेस्ट फ्रेंड नेहा। ऑलराइट, और नेहा और डॉक्टर अशोक के नाम ये गीत करेंगे। बैंडिट लाइक बेकहम एल्बम से लिया गया फीलिंग हॉट हॉट हॉट। ये प्यारा सा गाना टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, यस, जो हमें बहुत प्यार के साथ सुन रहे हैं शाम के 3 बजे से अभी, और 11 बजे तक आपको हमें सुनना होगा। इफ़ यू आर ट्यून टू रेडियो मनोरंजन ऑफ कोर्स। और इस समय जितने भी लोग भोजन कर रहे, बोना पेची सुरुचि शुभाहार, स्वादिष्ट भोजन के साथ प्यारे प्यारे गीत हो जाए तो क्या बात है। ऑलराइट, लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट ट्रैक, मिस्ट्रा बीनिंग की आवाज में फीलिंग हॉट हॉट हॉट। ओह यस, चलिए थोड़ा सा ठुमका लगाते हैं, थोड़ा सा डांस करते हैं। यस, वंडरफुल सॉन्ग, हॉट हॉट हॉट।

और मुका में बहुत ठंड हो रही है फिर भी हम कहते हैं फीलिंग हॉट हॉट हॉट क्या बात है हाँ जब हम डांस करते हैं म्यूजिक के साथ झूमते गाते हैं तो थोड़ी सी गर्मी पहुंचती है कि नहीं रात के 8:35 नेक्स्ट गाना प्यार प्यार प्यार ओए होए ये प्यार है तो ये जहान है प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं यह शबीर कुमार और साथियों की आवाज़ों में गीत आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी नसीब अपना अपना राइट और ये गीत शुभाज के नाम शुभाजी पोंबल मुझसे है उनके हबी के लिए गीत जाएगा हाय डॉक्टर अंजू ये गीत आपके फियांसे और आपके होने वाले ससुर जी और सासू माँ के लिए एंड यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे रेवती के नाम हाय रेवती दिस गाना फॉर यू फॉर योर हबी एंड फॉर योर फाइव डॉटर्स और इस समय स्नेहा हमारा साथ दे रही है हाय स्नेहा स्नेहा स्नेहा पॉजिटिव फ्लैग से हाय स्नेहा विशाल भैरव फ्रीकॉन फ्लैग विशाल भैरव फ्लैग में है उनकी पत्नी उनके तीन बच्चों के नाम और भैरव परिवार ऑफ फ्लैग एंड भैरव परिवार ऑफ कोहोमोंडेल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए सितालू परिवार रोज हिल से है सितालू ग्रेजुएट पोस्ट ये गीत आप लोगों के नाम भी हम चलाएंगे और चलो कोशिश करें आपको लाइन नहीं मिल रही है सो लेट मी रिमाइंड यू द नंबर इज द सेम 4028074020 पर डॉक्टर राकेश रामचरण प्लान मायो से हैं उनकी पत्नी उनके दो बेटे और पूरे रामचरण परिवार के लिए यह गाना जाएगा चलिए एक साथ सुनते हैं शबीर कुमार आशा भोसे की आवाज़ों में फिल्म का नाम नसीब अपना अपना

Love, only love. Yes. प्यार कभी भी हो सकता है, प्यार किसी से भी हो सकता है. Love has no age and no barrier. Just fall in love and be happy. अगला गाना नका नका बंदी. Yes, नका बंदी फिल्म का टाइटल ट्रैक. विशाल मंडप इटली में है, गीत उनकी पत्नी, उनकी बेटी और सब मंडप परिवार के नाम. निवेन वेंकर स्वामी, हेलो जी, आप भी कहो जी है सो गीत आपके नाम. सुपानी एंड ताचा फैमिली, दीपा तिवारी दुखेत, उनके हस्बैंड केविन, उनके बेटे, उनकी माँ, उनके सभी तिवारी और दुखित परिवार के नाम. सुनन चितन के, उनकी बेटियाँ और दामाद के लिए आप लोग रहते लिस्कालिए. ऑलराइट, ये गाना जो है नाकाबंदी फिल्म का गाना हम चलाएंगे रेशमा के नाम, उनके पति, उनकी बेटी और पूरे परिवार के लिए. और यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे यूनियन पार्क के गोवाडू परिवार के नाम. हेलो जी, उमा चकनाइकलू लिस्काली से, उनकी बेटी दृष्टि, उनके दामाद और बनहादुर परिवार, सब बहादुर और जगन्नाथपुर परिवार के नाम यह गीत जाता है नाकाबंदी. लेट्स सी व्हाट इज नाकाबंदी, लेट्स लिसन टू इट.

नकबंदी।

फिल्म रंगीला के टाइटल ट्रैक के साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। आपने बहुत प्यार से सुना, थैंक यू वेरी मच। ठीक 9 बजे हम प्रस्तुत करेंगे अगला प्रोग्राम एंड दैट विल बी भोजपुरी तड़का, और इसका प्रसारण होगा 2 चैनलों पर, रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन। और आप फोन कर पाएंगे 4028085 पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू MBC रेडियो।

0: continuous music. RM3.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: सब समाचारों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते। या तो और मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस सब समाचारों का स्वागत करते आज दिमास के रात दिमास 6 सितंबर साल 2026। बोले तो संगतियालोग आज के दिन कैसे बीतल? हमारे दिन वहाँ तो एकदम बढ़िया बीतल और सांझ भी अच्छी तरह से तो लोग के संगे संगे भी रही सफेकवा नहीं सांझ के 3 से 4 बजे

जेरी अरीसा रेडियो मनोरंजन पर ऐसा भी होता है, फिर शाम के 6 बज के आधा अरीसा नई सोच कार्यक्रम है और रात के 7 से 9 बजे रेतर और सात अरीसा दिनों की आवाज़ में। और अभी रात के 9 बज कल बा और अभी से लेकर रात के 11 बजे तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का नाच अब सा गाव अब सा झूम अब सा कमरवा डुलाव अब सा। हाँ जी, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम ही प्रोग्राम चाहे रोज के सांझ के रोज के रात के 8-9 बजे से 11 बजे एमबीसी रेडियो पर रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर 94.96.98.2 MHz और आईएम मोड पर 87.5 MHz। एमबीसी के दोनों चैनल पर सबको एक स्वागत बा। भाई बहन लोग, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, चल हमने के संगे नाचे गावे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम का जगह देवी जगोवित सिंह पर तुलो के फोन कॉल सा और एक से एक चकाचक गीत तुलो के पसंदीदा चलाओ अब सा। चलो शुरू कर लेना चाहिए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एक जबरदस्त गीत के साथ भोजपुरी भांगड़ा और गीत गाइले हवन अविनाश अविनाश रामधाइन। भोजपुरी के भंगड़ा भी होला ओए होए बल्ले बल्ले। चलो नाचे गावे हमने के संगे संगे सब रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग के नाम

और सबको ये ढांचा था गावा था झूमा था हमने के संगे संगे रात के बखत बा बड़ी ठंडा कर रहे था और बुझा था पानी बरसी और भी मंगल से सुना था लेता हूँ और मूवी हो ये मंगल से पानी बरसी हवा रही कहे के वो जबरदस्त शांति साइड को हमने के इलाके को रहा था और मंगल से था हवा हवा करी जैसे एक दो दिन पहले कर रहा हवादार मौसम पानी बाप रे बाप और जैसा कोई रात के भी सुना था सबके स्वागत कर रहे या तो लोग मनपसंद चैनल एमबीसी रेडियो एमबीसी यानी कि मोबों का मगाद और अगला गीत टुडे इज संडे जी हाँ तो संडे बा संडे इज फंडे और बेशक हमने इसे तो लोगों के साथ देखा तेर टुडे इज संडे बसंत सुपौल गीत वा गई वन गीत चाहते माधव भैरव के नाम जन्मदिन रहल 1 सितंबर के बधाई और प्यार कर मामा टीना पापा कवि पुपूरीना दादी माला चाचा साइलेन अपन चाचा से बड़ी प्यार करे रन तो माधव गीत और खातिर बाबू देवना प्यार आशीर्वाद चाचा साइलेन की ओर से और चाची रानी दीदी परी और सब परिवार की ओर से सब भैरव बसीतालू परिवार की ओर से माधव भैरव के देवना प्यार माधव भैरव रहलन जग्गू लेन मोहतबा और प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट हवन अभी रात के खुन सुना तो बोलते चाचू गीत मंगलवा कर खातिर हो माधव नाच गावा जुम अरे गीत रीता के रोचकर बहन रेणुका खातिर और भाई संदेश प्रीतम खातिर भी और रीता के रोसे को दुगो बेटा दुगो पतो और दुगो नातिन खातिर गो नातिन हपरी और दूसरा का नातिन अनुष्का तो चले गीत टुडे इज संडे मन करता नाचे के नाचे कमर हुआ डुलावा संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर ए

दिमाग के दिन तो चगब दिमाग के रात बाकी बात बाकी हमने के साथ का देर बहुत बहुत शुक्रिया जितना कोई हमने की सुनता छोटा से बड़ा रे सबके के स्वागत लाइक आलो के मीठा मीठा प्यार भरा जनन के सादर प्रणाम और हम उनके दोस्त के मोहब्बत और प्यार भरा सलाम हमने जानी रह सके तो लोग हमने की खुशी रह सब की आवाज़ हमने के प्रोग्राम बढ़िए प्यार से सुने जा बहुत बहुत शुक्रिया हमने के साथ दे खातिर और भी दिमाग की रात की तो आजकल देखा दे सके सब कोई परेशान बात सब कोई बोला था भाई महंगाई के ज़माना बताए को बात बोला थोड़ा दुनिया भर में महंगाई बा नहीं सोचा कि दूसरे देश में महंगाई नहीं बा कनाडा इटाली जर्मनी फ्रांस सगरो महंगाई बा भैया का कर बहुत परे राज्य के इन्फ्लेशन भाई कहते सब चीज़ महंगा बा कह के हमने जो से दूसरे देश से तलौची कोई महंगा बा का कर भैया नहीं खाई बा तो चेहरा करी मेहनत लगन से काम करे के और एगो पार्ट टाइम जॉब करिए जा एक वो काम पर पिए कर बता थोड़ा मुश्किल बात है और एगो काम करिए जा भगवान थोड़ा इतना क्वालिटीज गुण दिलक बात ज़रूर कोनो न कोनो रास्ता चला तो हर सामने तो ज़रूर और घर में जब पति पत्नी काम करी तो कौन रखा बा अब खाली पतिदेव काम करी थोड़ा दिवसिल बाप तीन चार गो लेकर ही पो सके तो फासिल नहीं बा तो भौजी दर्शन भैया के एदे कर दिया तू भी कुछ छोटा मोटा काम करिए ताकि सकब भैया के एदे करे हो कि नहीं तो महंगाई के ज़माना चाहे कितना भी क्यों ना रही हम नहीं तो गमट करते रहे अब सर तलो के नचेते गवाते रहे अब सर जय दे मामू जय दे मामू जय दे मरा मामू राधा राम सहार शर्मिला गीत गावत नरगीत चलावती सर कासम खास चित्रा और ज्ञान विश्राम के नाम ममन मोदा से और रही गीत चली कमला जी ने चीज़ों फो आरोही कहते रमन चीज़ों से बड़े प्यार करे रन और प्रमीरा फ्रांस से मिलकर साथ होते हैं हेलो प्रमीरा गीत और खातिर नदी वाला भाई हवन वैनकूवर कनाडा से था गीत और नाम जितना कोई इंटरनेट के जरिए उनके सुना था on www.mbc.tv.com और साथ में दैनिक लिसन रेडियो मशहूर लिसन रेडियो मनोरंजन आज हमने के टिकटॉक पर नहीं चलता प्रोग्राम आज चलता रेडियो मनोरंजन और रेडियो मशहूर पर www.mbc.tv पर भी हमने के साथ दिया रात के 11 बजे रेतर चलो सुन अब जा प्यारा संगीत जय दे मामू और जितना कोई भी रात के काम कराता है गीत लोग के नाम और सब बोंक वॉश

माफी से गीत चल कर हो जरा माफी चाहत है राधन राम सहर शर्मिला रघुनाथ गैरेवन जय दे मामू चल गीत सुने जय दे मामू

0: RM3 Radio.
1: Eight 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
2: धेमन महाग्रंथ पर ढेर कुछ सीखी रहा सा महाभारत रामायण वेद पुराण शास उपनिषद और रामायण में बतावल गल बा कि मित्रता कैसन चेहरा रहे कि राम भरत जैसन राम भरत की मित्रता राम हनुमान की मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता और भगवद्गीता में कृष्ण सुदामा कृष्ण बलराम की मित्रता के बारे में बहुत कुछ कह गल बा आज की दुनिया में बाईस मित्रता सकेरा हो एक दो प्लस पर ऐसा मित्रता जहाँ पर कोनो छल नहीं बा जहाँ पर कोनो मन मुटाव नहीं बा और राम भरत जितना राम से प्यार करतलन भरत सकी राम खातिर अपन जान दे दे राम भी सकी तब भरत खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दे ऐसे ही हनुमान के दिल में राम रहल हनुमान ने अपन दिल चीर के बताए रख कि कितना वो राम भगवान संगे स्नेह करेरा और वो राम भगवान के बन प्रभु माना दलन और के बन भाई लिखा अपन स्वामी लिखा पूजा करता हल ये खाते जब वो दिल जब अपन चीर लगते को मैं राम सीता लक्ष्मण नजर आवेरा और राम बल राम के जन मित्रता है और कृष्ण सुदामा हो सुदामा बड़ी गरीब रहल पर फिर भी कृष्ण भगवान के अपन दोस्त मानत हल और एक दिन जब सुदामा गल कृष्ण भगवान लगे तो कृष्ण जाने रहा कि सुदामा दुख में बात है कृष्ण भगवान उनका सब मनोकामना पूर्ण कर लग हम यही चाहते हैं कि आज की दुनिया में ऐसा दोस्ती जो है अगर रहत कितना अच्छी बात रहत पर आजकल कम ऐसा दोस्ती ऐसा मित्रता मिलेला तो अगर इस समय बेस्ट फ्रेंड लोग सुनता तो अगला गीत लोग कहते हैं नया सिरे गीत जो है चली हरीश नारायण का तेर और बेस्ट फ्रेंड की ओर से हरीश नारायण रहे मिलेंस और एक गीत नटराज रामकुरंज के नाम आपने फोस गीत और बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से नटराज के नाम और हे गीत अपनी खास हम खास चरावप स वीना कुपुस्वामी जी के नाम आप रहेलन मेबर गोकर घरोला बेटा पतो बेटी दामाद और सब चीज़ों फोनों का तीर और सुलमा दुखित मेबर से शोहर कर दुगो बेटी और हे गीत चली विश्वानी बाबूलाल जुनरन लागोजा कर पति और कर सब लड़का के नाम और भाई रघु और भाई निधु मेबर रहेरन और भाई चमीलाल गीत तो लोग के नाम चलावते नया सिरे चले एक साथ सुने गीत और जितना कोई भी हमने के साथ जुड़ल बात और लाइन ना मिला था कोई प्रॉब्लम नहीं चला गीत तो लोग खातिर भी चलावते नया सिरे कुना बाबूलाल की आवाज़ में

कितना चली गीत रहल हाँ कि नहीं सब कोई गीत गुनगुनावा था तू सुन ले तो के का हम बोलत हैं और जब बड़ा आदमी तो बात बोलते बड़ा आदमी की बात

सुनिया जा अपन से बड़ा के हमेशा मान आदर करिया सेवा सत्कार कर अपन से छोटा के दे मना प्यार दिया लड़का लोग में भगवान बा दस बोझी बही रहा ना तो लड़का लोग के खूब दुलार कर

मान करते रहे और लड़का लोग से खूब दुलार कर और लड़का लोग खुशी रहेगा तो हमारे को निविबा हमारे को कुजन के लड़का बो को नामा माधव जहाँ के दिखे रहा चचा जान कब अब मन लगे चचा जान हो मर चचा जान और जब हमको लगे जाए लड़का संग खेत लड़का बोला आज उजी मोपा पुलिस वाली एक जन प्यार है जन अपना अपन है गो लड़का के दिल में अपन चाचा के प्रति और गो चाचा के दिल में अपन नेवे खाते अपन भतीजा जन प्यार रह रहा था आ हा हा क्या बात है तो लड़का लोग से प्यार करते रहिए बड़ा आदमी लोग के मान सम्मान देते रहिए और उनके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर आज चला था प्रोग्राम भोजपुरी तरका स्टूडियो रेडियो मॉरिशस और स्टूडियो रेडियो मनोरंजन से एमबीसी मौका से हमने के प्रसारण चला था इस समय और अगला गीत था मुर्गा मियाँ अबे मुर्गा जोन है मुर्गी बिना मकई नहीं खड़ा बोला तो प्रॉब्लम नहीं है अरे मुर्गा जब ले मुर्गी ने आए मुर्गी को से बात नहीं करी तब ले मकई नहीं खाई हाँ मीरा मोहन की जो गेरेवन बहुत बहुत प्यार से मुर्गा मियाँ और की जो हमने चलावते इस खास हम खास उदय धनीराम जी के नाम आप रोन खबिया जी पोस से कर पत्नी कर बेटी दामाद बेटा पतु और प्रीतम राज जी मिला वन से वन केशव बिलक है गीत और खाती थोड़ा सा परिवार जानकी परिवार सुना था हमने के जानकी श्रीमान जानकी की ओर से कर पत्नी को दुगो लड़का और माता जी और भूतिक बा है जानकी स्तोत है गीत और खातिर अश्विन बच्चन और सब बच्चन परिवार हमने के साथ देवतवन खबिया जी पोस से आशा जानू हवन को तेज से शुभम दीदी आरती जीजा जी और माँ और सब परिवार के और गीत खास हम खास स्वीट एंड लवली रेहाना हसन अली के नाम आप हवन फेनिक से बहुत प्यार से उनके साथ जुड़ा हवन और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुना था वन द रेहाना हसन अली खास हम खास है गीत और नाम मुर्गा मियाँ मुर्गा मियाँ द्वारा से कहा बोला था चलो एक साथ सुने मन करता नाचे के नाचे गावा झूमा मुर्गा मियाँ आहा हाइट देखा मुर्गा नाचे रखा मुर्गी के देख के बाप रे बाप रात के कुकुरुकू बाप रे बाप मुर्गा तो दीवाना हो गया मुर्गी के देख के बोला था कुकुरुकू कुकुरुकू ए हे

मुर्गी की स्याला कह रहा कट कट कट कट कट कट कट कट कट कट कट कट कट कट और मुर्गी के जब ऐसा खाए के जब से आ आ आ आ आ आ आ आ आ करी रहा तब मुर्गी आवेला तो नहीं मुझे मुर्गी है जब ओके आ आ आ कर बताओ आवेला ढोल ले आवेला मुर्गा के बोला कुकुरु कु कुकुरु कु कुकुरु कु और बेशक भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में सब कोई के स्वागत करते जा जे कोई अभी भी रेडियो एन ऑन कर लग बा रेडियो चून कर लिया हुआ ढेर कोई हमकी सुनता एमबीसी प्ले पर मोबाइल के जरिए ढेर कोई हमकी देखो देते हैं टेप पर सुनता ढेर कोई राजो में तो ढेर कोई अपन पोताब में भी हमकी सुनता वन डिजिटल मोड पर अच्छा बा एगो कहानी अब सुनाओ अब जतलो के रात के समय बा सुना एगो जोड़ी सन कहानी कहानी के शीर्षक है पापा दे सीमो और लिखले के लिखले वन गी दे मोपासो तो सीमो एगो लड़का के कहानी है सात आठ बरिस के स्कूल जाला वन माँ लाब्लॉशत संगे रहेला और ओकर पिता के बारे में गांव के लोग तरह तरह के बात करे रहन सा सीमो के पिता ओकर जन्म से पहले ही ओकर माइक से अलग होकर रहल इस कारण से स्कूल के बाकी लड़का लोग सीमो के चिढ़ावत है कि तोहर बाप नहीं बा तोहर बाप नहीं बा सीमो बहुत दुखी होता है जब लड़का लोग ऐसे करे को संगे तो बाकी लड़कवन के ताना सुन सुन के चुप रह जाता है बल्कि ओकर मन में बहुत पीड़ा होता है कि लड़का लोग हंसे ला कि ओकर बाप नहीं बा एक दिन लड़का लोग ओकरा बहुत ही परेशान कर लन सा और वो लड़का लोग से लागे करे लगल और वो सीमो जोन है दिन रोते रोते नदी के किनारे पहुँच गल वो बोला कि आज वो आत्महत्या कर दे अपन जान दे दे नदी में कह के बहुत निराश होकर सब कोई हौसला कि तोर बाप नहीं बा तोर बाप नहीं बा वही समय फिलिप एगो व्यक्ति है जो बहुत ही दयालु है और वो लोहार के काम करे लन तो फिलिप सीमो के रोवत देख ओकर लगे आवेला और बोले तू काहे रोवत हो बेटा और तू नदी के पास का करत हो तो सीमो अपन सब कहानी फिलिप के सुनैलक तो फिलिप ओकर से बोलक तू दुखी नहीं हो आज से हम तोहर पिताजी हम तोहर पापा हैं तू सगभंग के पापा बुलाए जीवन में कबो भी ऐसा काम नहीं करिए आज कुछ ज़्यादा करे जाते नदी में अपन जान देवे ऐसा काम नहीं करे के तो फिलिप ओकर हाथ धर के ओके लेके गए ओकर माँ लगे और ओकर माँ के बोलक कि लड़का का करे जाता हर फिलिप सीमो के हिम्मत दिलक और बोलक कि तू जैसे बोलक कि आज से तू उनके सगबा पापा बुलावे तो सीमो की वो कुहाज मिलल और अगला दिन जब स्कूल गल लड़का जब उनके चिढ़ावा था सीमो के तो सीमो बोले हमके मौके नहीं करा सर हमरो बाबा हमरो पापा बा हमार पापा के नाम बा फिलिप और ये बात सुन के सब लड़का लोग हैरान हो गए कि अचानक फिलिप के अचानक सीमो के बाप कैसे मिल गए बाद में फिलिप सीमो के माई लगे जाला और फिलिप सीमो लगे जाला फिलिप जना सीमो लगे जाला और सीमो की माँ के प्रपोजिक करेला शादी के तब कहानी के अंत में जो है फिलिप और लाल ब्लॉशत के शादी हो जाला और जो है सीमो के एगो परिवार मिल जला ओकर माँ तो दे जा रहा लाब्लौशत ओकर एगो बाप भी मिल जाए पापा के नाम रहेला फिलिप तो कहानी से ये सीखा कि किसी बच्चा के खुशी या सम्मान खाली ओकर पिता के नाम से नहीं बल्कि प्यार अपनापन और

अच्छे व्यवहार से बनेला समाज में एगो लड़का तभी सुखी रहेला जब ओके माँ बाप के प्यार मिलेला। तो बेशक जन कहानी है, ये कहानी के शीर्षक है पापा डे सिमो। सोशल मीडिया पर ही अनेक भाषा में बा कर फिल्म भी बा जैसे आने में बा तो थोड़ा मौका मिली तो जरूर जाइए जा सोशल मीडिया पर ये कहानी पढ़िए। ऐसा भाई कि देखे भी वीडियो में कहानी के शीर्षक है पापा डे सिमो और एक लिखले वन गीत मो पास होते कहानी बतावेला एगो लड़का की जिंदगी एगो लड़का के माँ बाप के दोनों के प्यार चहला खाली माँ रही तो ओके बाप के प्यार भी चहला तो एगो लड़का तभी सुखी रहेला अच्छी तरह से बड़ा हो रहा परवरिश जब एगो लड़का के माँ बाप के प्यार दोनों के प्यार मिलेगा तब वो लड़का जीवन में आगे बढ़ेगा। तो जरूर हाई कहानी पढ़िए कहानी के शीर्षक है पापा सिमो और लिखने वन गी दे मुपासों। अब चला सुनब जा अगला गाना दादा के कहानी। अब भाई कहानी हमार कहानी सुनने ला अब दादा के कहानी सुनब सर गसन सिंगारन संगे और है गीत हम चलावते खासम खास संजय बिहारी की ओर से पत्नी सुरेखा बेटा कुशल बहू बेटी बेटी के नाम रिंकू रिंकू ओवन लुक्जम्बू में रिंकू और उकर घरोला और उकर लच्छी बाबा के नाम संदेश की ओर से लता खजरे गीत और उकर बेटी शिवानी अंजलि और ये गीत चली वंदना कुमारी की ओर से पति को लेकर खातिर और साइलेंट की ओर से गीत चली उकर पत्नी रानी और बेटी परी खातिर। चले एक साथ सुनब जा दादा की कहा

दादा की कहानी सुना, दादी की कहानी, और इस समय तू सुनाते हुआ भोजपुरी तर का कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम चला था एमबीसी रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। और अब हमने दुलाक बताओ जा इमली के तत्व, जो इमली में खाइला सा इमली के तकारी में इस्तेमाल होला और इमली के कॉम्पोट भी बनेला। तो इमली में जो है ढेर मना गुनबा, जैसे टार्टरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज तत्व, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन भी। और जो है जो इमली में खाइला सा, तो एक में जैसे बोली एक में टार्टरिक एसिड बा। इमली के खट्टा स्वाद मुख्य रूप से टार्टरिक एसिड के कारण होला, और ये इमली के सबसे खास प्राकृतिक है। और जब कोई के फीवर होला, सर्दी जुकाम होला, जब तुम्हार मुँह अच्छा नहीं रहेला, तो इमली दू को खा ले तो तुम्हार मुँह बन जाए तुम्हारा तो स्वाद चलाए। और कार्बोहाइड्रेट, इमली में प्राकृतिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट पावल जाला, जे शरीर के ऊर्जा देवेला। और इमली में फाइबर बा, और ये फाइबर जो है पाचन तंत्र खातिर बहुत अच्छा है। तो लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम खातिर अच्छा है। इमली खेबा तो तुम्हार खाए के हाली से पच जाए। इमली में कई तरह के खनिज तत्व भी बा, जैसे पोटाशियम। पोटाशियम शरीर में द्रव संतुलन, मांसपेशी के सामान्य काम में मदद करेगा। और एक में मैग्नीशियम भी बा, और मांसपेशी या तंत्रिका के सामान्य कार्य खातिर। कैल्शियम बा, ये हड्डी और दांत के मजबूत बनावेला, तो इमली खेबत और हड्डी और दांत मजबूत हो जाए। और फॉस्फोरस बा, हड्डी के ऊर्जा के समान जिन है। और आयन बा इमली में, और ये हेमोग्लोबिन बनावेला, तो और खून के जिन क्लॉथ्स है वो के अच्छी तरह से बनावेला, एकर में आयन बा। और इमली में विटामिन सी और विटामिन बे भी बा। और इमली के कैसे उपयोग होला, तो इमली के इस्तेमाल मुख्य रूप से चटनी, अचार, सांभर, दाल, सब्जी या तरह तरह के व्यंजन में का इस्तेमाल होला। ध्यान रखिए कि इमली फायदेमंद खाद्य पदार्थ सकेला हो, बल्कि के ढे मना नहीं खैया, ढे मना खैबा तो प्रॉब्लम हो। हिसाब से खैया जा इमली। और इमली जो है अनेक प्रकार के, अगर एक चीनी में भी डाल के पकावे से कॉम्पोट भी ला सा इमली, या इमली के टक्कर शादी में जब जाइबा

जब सामदी के जब हल्दी होला तो चिपुरी से कागे चिपुरी मिले ना जब खाली बचा टक्कर मिला हाँ ये कॉम्पोटवा के हमने ऐसा कॉम्पोट है कि ढेर कोई टक्कर बोले ला तो इमली खाइए और हमने के साथ देते रहिए रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर हमने क्या अच्छा लगा था कि प्रोग्राम के जरिए थोड़ा मिला था ढेर कुछ सीखे के भी और हम लोग के भी मौका मिला था तो उससे ढेर चीज पता से करेगी तो हमेशा याद रखे बाजार जी बता थोड़ा सुन इमली किन्या भी बाजार में मिला था हम कुछ दिन गई थे जुड़ी जुड़ी इमली नहीं माहो माहो बाकर लाखों समय थे लाखों का निकाल के जुड़ी से आहा से भी मौसे खाई होकर टक्कर बना के खाइए संजय सिंह गुलाम की गीत चलिए अब रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर चांद जैसन चेहरा और है गीत तो हमने चलावते इस खास हम खास श्रीमती विभा बंधन खतीर हेलन पोट्रिस बहन जी चंपा रघुनंदन मिसेस रागुबा मिसेस ओकल और जितना स्टाफ जो है पहले जो नेम जाए कॉलेज मौका में काम कर रहे सलो खतीर मोखवायो के मोन खतीर है गीत चली माया महाबीर साइडिश महाबीर विद्या और मिसेस द्वाका खतीर और चले एक साथ है गीत सुनम जा और बेशक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी सन गीत है चांद जैसन चेहरा केकर चांद जैसन चेहरा व चेहरे सुनब जा संजय सी गुलाम की आवाज़ में और थोड़ा लाइन ना मिला था फिक्र नहीं करिए है गीत तो हरो घाटी चलाओ दी सब बहुत बहुत प्यार के साथ

भोजपुरी भाषा हमनी के भाषा हमनी के संस्कृति हमनी के धर्म सभ्यता से जुड़ल है भाषा जैसे हम हिंदी पढ़ी रहा सा संस्कृत पढ़ी रहा सा था भोजपुरी भाषा भी बोली रहा सा और ये हमनी के धरोहर है भोजपुरी और भोजपुरी में बात करिए जुड़ी भाषा और जब भोजपुरी की बात करते हैं सर तहाई बरी 26 सितंबर के 26 सितंबर की लगी द फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट बैंक्वेट हॉल ओसिनाल में और कुणाल हीराली प्रोग्राम के आयोजक हवन और करमे रही रंभा राम टोहल नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हीराल रोशन सदा सिंह कृषि मुनिक और होस्ट अयन एमसी अवनीश और ढेर मना डीजे कर में भाग ले नील स्पेकी स्पाइकी वकील डीजे अभी डीजे आनी और बेशक प्रीसेल टिकट 500 रुपया और डो पर जेबा तो 700 रुपया तो ज़रूर जलसा की रात बा कॉन्सर्ट में आइए जा परिवार सहित लैका फैका माता पिता चाचा चाची नाना नानी दादी सबको आइए जा भोजपुरी जलसा देखे जी हाँ फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट रही बैंक्वेट हॉल और सिनाल में भूल या ना या आई महीना सप्ताह के महीना लिवेंसिस सप्ताह के रात के 7 बजे से यस चल अभी कुणाल हीरलाल के आवाज़ में सुनब जागला गीत जलसा हो और एक गीत हमने खासम खास चलावत इस सब संगतियालों के नाम सेंट ओबेन एसएस कॉलेज जो सेंट ओबेन में स्थित बा वहाँ के सब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के सब हमारे कोलेग हमारे स्टूडेंट्सों के नाम जो बी ए फ्रेंच एम ए फ्रेंच और पी एच डी फ्रेंच में एनरोल हवन सर तले का लोग है गीत तो लोग के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और ये गीत हमने चलावते इस खासम खास टीना दीना प्रतिमा केत रोशनी और स्वीट एंड लवली बानू खातिर जो बहुत प्यार से विराट के अमी के सुना था वन खासम खास गीत टीना दीना खातिर और बानू खातिर चलो एक साथ सुने जलसा जलसा हो

हरकतें नचाए आ हा हा हा और बेशक हम न्यू ना से देश गावत ईसा तलो के संग संग रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर और अब बॉलीवुड की ताज़ा खबर ढेर कोई कुछ है बॉलीवुड की फिल्म देखे के तो सुनने में आलबा कि सलमान खान बिग बॉस 20 के प्रीमियर के लिए के ज़बरदस्त बस हुआ था सलमान खान जिन शूटिंग कर दी रखबा और एक जिन प्रोग्राम चली बहुत जल्द और शाहरुख खान के बारे में निर्देशक संजय गुप्ता शाहरुख खान से जुड़ा लगो पुराना किस्सा शेयर कर लें जिसमें बोलन कि अंडरवर्ल्ड की धमकी के सामने झुके से इनकार कर लगभग शाहरुख खान और अक्षय कुमार सैफ अली खान हवाईन 11 आई जो फिल्म है हवाईन 11 एक नजर अक्षय कुमार और सैफ अली खान 11 सितंबर की फिल्म रिलीज हुआ था फिल्मों के नाम है हवाईन 11 ये फिल्म के लेके जो है श्रोता लोग काफ़ी एक्साइटेड बा कहे कि बड़ी खूबसूरत फिल्म रही और कार्तिक आर्यन बॉलीवुड एक्टर अगर फिल्म कैप्टन इंडिया की शूटिंग आखिरकार शुरू हो गल बा करीब 5 साल के देरी से ये फिल्म जो है बहुत जल्द हमने की बड़ा पर्दे पर आई फिल्मों के नाम रही कैप्टन इंडिया और मनोज वाजपेयी जी हाँ मनोज वाजपेयी पहली बार के लिए सिनेमा में महात्मा गांधी के किरदार निभाई उनको फिल्म में तो पहली बार के लिए मनोज वाजपेयी के देखभाग गांधी के रोल में और मिर्जापुर द मूवी हाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेज़ी से कमाई कर जाता और जो है बोला जाता है कि एगो बड़ी हाई बजट फिल्म है ये फिल्म के खूब पैसा मिल जाता है फिल्मों के नाम है मिर्जापुर द मूवी बहुत जल्द ई मॉरिशस के सिनेमा घर में भी नजर आई है और एगो फिल्म बनाता है रामायण नुकर में सनी देओल हनुमान के रोल निभाइन और रणबीर कपूर जो है राम भगवान के रोल निभाइन आहा देखब से फिल्म को रंग लावेला और रामानंद सागर के रामायण बना रहा बहुत साल पहले और अब सुनाता कि वो बड़ी फिल्म बनी रामायण दिवाली है बड़ी जब दिवाली आई तो दिवाली में रिलीज हुई फिल्म सनी देओल रही हनुमान के रोल में रणबीर कपूर रही एक में राम भगवान के रोल में चलो भगवान से प्रार्थना कर सर कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही अभी के लिए चलो फ्रीमैन वी लागो से सुनब जाए गीत झुमका बहुत ही प्यारा सन गाना है गीत चली विकास नारायण खतेर चिबुग राजा स्टीव नानो श्याम मंगल प्रवीण भैरव राजमन्ना सुदेश जसवा जिमी दुखिया और सब संगत्यालु के नाम और एक गीत संजय हरिचंद की ओर से उगर पत्नी उगर बेटी उगर सब परिवार पितों से कुणाल हिरीलाल थोड़ा सब परिवार के नाम पूर्णिमा फोकिया एक गीत थोड़ो खाती चलाओ सब बहुत बहुत प्यार से और जिन संगत्यालु के नींद नहीं लगता कोई करवत इधर बदलता करवत उधर बदलता तो फिक्र नहीं करिए अभी रात के 11 बजे ले तो लोग संगीत गवट कर अब सर चला गीतवासी ने गीतवा के शीर्षक है झुमका

0: RM3 Radio. Radio. On the hour, every hour. Radio Marches.
1: अभी एक महीना से हमने श्रावण मास के व्रत धारण करी से घर में यज हवन होल वेद पाठ होल पूजा पाठ होल शिव अभिषेक होल और अब श्रावण मास के बाद अब थे कोई गणेश भगवान के व्रत धारण कर ले उनसे कहे कि कहते उस कैंसेप्ट हमने हम मनाओ अब से गणपति बापा के त्यौहार गणपति बापा मोरिया जी हाँ गणेश चतुर्थी के महान पर्व रही बहुत जल्द तधे कोई भी व्रत धारण कर लगबा गणेश भगवान की मूर्ति सब घर घर में सजावल गलबा तथे लोग के व्रत सफल हो हम दिल से प्रार्थना करते हैं जितना गणेश भक्त लोग बा जितना कोई कागम रख ले वनसा तो लोग के कागम दुल के व्रत सफल हो और गणेश पूजा हो झाकड़ी हो भजन कीर्तन हो और जब गणेश चतुर्थी हो जाए तो गणेश भगवान की विसर्जन कैसे नदी में समुन्द्र में और धेमना जिन हर श्रोता लोग व्रत धारण कर ले उनसा तो गणपति बापा से प्रार्थना करब सर कि सब कोई की व्रत सफल हो और गणेश भगवान जो न बुद्धि और ज्ञान के देवता हों उनजा और घर में सुख शांति आवे जब गणेश और कोनो भी पूजा जब करब तो गणेश भगवान के नाम सबसे आगे ले जला कोनो भी कार्य करब शुभ कार्य चाहे शादी हो मंगनी हो पूजा पाठ हो या गो लेखा का जन्म हो तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः है मंत्र बोल के तब कोनो काम करिए तो हर कार्य में सफलता मिली तो हमने के जन शिव पुराण बाकुर में बतावल गबा कि गणेश भगवान के जन्म कैसे हो रहा तो बहुत समय पहले की बात है शिव पार्वती के शादी हो रहा तो पार्वती माता जिन अपन साल डिबे में स्नान करता है और वो नहीं खुशी रहता कि कोई एक कुत्ता अचानक घर में चला आई तो वो खातिर का कर लग पार्वती माँ जब वो नहा था अपन साल डिबे में तो अपन शरीर के जो मैल है वो मैल से वो एगो मूर्ति बनाई लग एगो मूर्ति एगो लड़का के मूर्ति बनाई लग और अगर मैं प्राण प्रतिष्ठा कर लग फूक लग और बोलक लैकवा तो जीवित हो गल तो माए बोला था लैकवा से देखा हम स्नान कर जाते बाबू कोई भी आए तो बोलिया घर में नहीं हिले के हम स्नान करते स्नान कर ले अब तो हम ही आप ज्वाइन करें तब लैका अपन माँ के पहरेदारी करा था माँ चल गल नहाए तो शिव भगवान जो हिमालय पर्वत से तपस्या करके लौटा था तब जब द्वारी में आए तो गणेश भगवानों के रोक लग तो शिव बोला था ए लड़का तू के हवे तो बोलते हम हमारे माँ के बेटा है मामा के बेटा हुए बोले हम तो नहीं जाना शिव बोले हम तो नहीं जाए बोले हाँ तो हमू थोड़ा नहीं जानी रहा हम थोड़ा नहीं जाए दी हमारे माँ के आज्ञा है कि कोई भी घर के अंदर नहीं जाए जब ले स्नान

करी था। अब शिव और गणेश में बातचीत हो लगल रही, बातचीत हो लगल था। अब शिव तो क्रोधित हो गल और अब क्रोध के मारे जो है वो दंड दिलक गणेश के, और बंशीशूल से वो गणेश के धर अलग कर दिलक, गणेश के गला काट दिलक। गणेश धरती पर गिर गल और माँ पार्वती जो है जोर से लिखवा छे माँ हला कर लगता। माँ पार्वती दौड़ ले आल, आगे दिखा था कि गणेश भगवान जो ना खून में लथपथ। तब माँ पार्वती रोए लगल तो शिव के बात बोल लगा, बोले तू काहे इसे कर ली, हमार लड़का है, हम के प्राण प्रतिष्ठा तू के मुआ दिले, बोले हम तो के क्षमा नहीं करब, बोले हम चाहे हमार लड़का के तू वापस जिंदा करब, जिंदा नहीं करब तो त्राही त्राही मच जाए। तो शिव जी डरगल और अफसोस हो कि वो अनजाने में अपन लड़का के खून कर दिलक। तो शिव अपन गणनों से बोलक कि जहाँ से खोज से कोनो भी सबसे पहला प्राणी, कोनो भी जीवित प्राणी तोरा मिली तो ओकर गला काट के अन्य से हम लिखवा के जीवित करब। तो शिव के गण था ये लोग गल सकरो खोजे तो जो पहला प्राणी मिलल उगो लिलीफों के हाथी के बच्चा मिलल, तो गला काट के अन्न से तब शिव जी हाउ गणेश हाउ लिलीफों के बचवा के ओकर गला लिखवा में डाल के प्राण प्रतिष्ठा करलक और गणेश जीवित हो गल। तो दिन से गणेश के वरदान मिलल बा कि सबसे पहले कोनो भी पूजा हो तो गणेश भगवान के नाम लेवल जाए। तो हई में देखबा कि गणेश जिन भगवान है वो थोड़ा अलग है, ओकर में हाथी के सर बा और मनुष्य के शरीर बा, पर गणेश भगवान बुद्धि के दाता है और सिद्धि विनायक है, गणपति बापा है। तो चल जितना कोई अभी गणेश भगवान के व्रत धारण कर ले वन से अभी गणपति बापा के पूजा करब से लिखाते उसे कैंस ले। तो चल एगो गणेश वंदना सुनाओ जा बिस्वानी दीपवा के आवाज़ में, सब गणेश भक्त लोग के नाम भगवान गणेश के आशीर्वाद तो लोग सब पर बना रही।

समय के साथ देखा था ऐसा कि इंसान बड़ी मोवे हो जाता बात बात में लड़ाई झगड़ा पर लड़ाई झगड़ा करे लगेला और कोई की बात नहीं सुने ला आज के इंसान काचनी का ही इतना मोवी गलबा आदमी लोग कोई पर भरोसा नहीं सकबा करे जेकर पर भरोसा करबा वही तोरा छुरी से भोंक देवेला तो दुनिया ही से चला था एक कलयुग बोला ला कलयुग में कोई पर नहीं सकबा भरोसा करे अपन माँ बाप के छोरा के हो कि नहीं हाँ तो समय जो है बड़ा बुरा चलता दुनिया उल्टा घूमता पर बुरा आदमी भी बा अच्छा आदमी भी बा पर अच्छा आदमी कमती बा ये अच्छा आदमी बा तब तब जाके दुनिया भी टिकल बा वरना दुनिया कब के समाप्त हो जाए कोई लाफेन जीवन सोचता हो दुनिया के अंत हाँ तो सेम ही गल बा देखा तो वह कहूँ कहूँ पर कैसे अवालों साल बाद नेपाल में भी फिकवा देख रही सर कैसे एगो सुनामी दिखा रहा कितना 1000 से भी ज़्यादा लोग मर गल बा इंडोनेशिया में इतना गर्म कर रहा था कि वहाँ के जंगल में आग धरने लग बा और आग से ठेर करके जान जात बा और दूसर पे में देखा था यूरोप में कौन गए थे तो पे आचियो कर ले रहा इतना गर्म कर ले रहा कि लोगन के जान जात बा तो ये सब हमने की एगो एंजकाशन दे हुआ था कि दुनिया के अंत में अब देरी नहीं बा हाँ तो कलयुग के अंत में भगवद गीता में लिखल गल बा विष्णु के अवतार में से एगो अवतार ही कालकिन जो है विष्णु भगवान एगो घोड़ा पर सवार होकर हाथ में एगो रही गो चीज जिनसे वो दुनिया के साफ करी ऐसे बोल गल बा कि कालकिन रूप में विष्णु भगवान आए कलयुग के अंत में हाँ तो ये सब लिखा गल बा उनके धर्म ग्रंथ में और ये सब सीन मिला था आजकल कि बड़े आदमी बड़िए मोवे बाप फुफ का करवा और बेशक अभी रात के समय बात तू सुना तो भोजपुर का कार्यक्रम अजय प्रताप सिंह के साथ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मनोरंजन 94.96 98.2 FM और रेडियो मॉरिशस 800 AM मोड पर चलो तो अगला गीत सुन जब से तोरा देखनी रोशन सरा सिंह गैरवन गीतवा गीतवा चाची ललिता कुशल खातिर रहेलन त्रियोले और सब चिराखन परिवार हरकू परिवार कलकतिया परिवार त्रियोले से भाई हरीश कैसे बा भाई हरीश बबासन सेवन काला छोटी पोलॉजी से और चाचा आत्माराम दीपक भाई हवन इंग्लैंड से रंभा हवन लास्विस से कर्तिन गो बेटी घरोला अजय पूनम चिंदराम ऑस्ट्रेलिया में हवन और भाई चंदन भौजी प्रिया माँ इंदिरा चिंताराम सलोनी और सब चिंताराम परिवार खातिर अगला गीत चाव अब जब से थोड़ा देखनी अगर थोड़ा भी किर से प्यार हो गल बात प्यार के अपन दिल में नहीं छुपैया प्यार के इजहार करिए काहे छोकरी का शर्मा हो अगर सच्चे दिल से तुके प्यार करे तो जाके बोल दिया बोलिया हमके तोर से प्यार हो गल बा आमी तुम्हार को बालो बाशे या आई लव यू या मो कौन तो बोल दिया देखिए का बोलेगा अभी चले गीता सुन जा रोशन सरा सिंह के गावल जब से तोरा देख ली अरे चलो अभी नाचब सत्संगे संगे रोशन सरा सिंह के साथ

0: सच्चे के
1: जब से तुरा प्यार करने
0: अंकित तेरे से प्यार हो गल भाई बट बोल दिया ओके
1: Je
0: t'aime mon bébé या आई लव यू बोल दिया क्या मुख कौन तो तमो गादे

से तोरा देख ली रोशन सरसन की आवाज इतना जोरी गाना रहा हम तो नचते रह गई री और जब हम नाच रहे थे नींद नहीं लगी रहा और बहुत बहुत धन्यवाद उनके साथ दे खातिर संगतिया लोग भाई बहन लोग श्रोता लोग जहाँ से भी उनकी सुना था भाई यह तो लोग मनपसंद रेडियो।

रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस आई है 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन साल में हमने तरह साथ दे रहा था और जब से फॉर अ साइड में एमबीसी रहा तब से एमबीडे हो गया 25 बरिस हमने के एमबीसी में काम कर ला रेडियो विभाग में और तलों के साथ देते रही राजा और हर बरिस साल 2000 हर बरिस जो साल के बेहतरीन भोजपुरी गीत प्रस्तुत कर रहे सर हम प्रताप सिंह साथ में सुरेखा दोनों जना 25 बरी से कम हुआ करते इस और करते रह सर तो लोग का आशीर्वाद रही था और बेशक अभी हमने तो लोग के साथ दे होते इस रेडियो की लहरों पर और बेशक बोली जा सकती जब तू बीमार पर्वत जुन हा तू अपन से दवाई नहीं लिया है तू डॉक्टर नहीं हुआ जब बीमार पर बता जाइए डॉक्टर लगे जाता अस्पताल में या को प्राइवेट डॉक्टर लगे जाइए चिकित्सा कराइए कंसल्टेशन कराइए डॉक्टर जब थोड़ा जुन दवाई दे तो वो दवाई भी नहीं बोलिए नो दो न मेक्सिन लाकार मुझे बोली मुझे फिनी भी नहीं नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है जब तू बीमार है बता कंजूसी नहीं करिए जाइए डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर थोड़ी इलाज करी तो अच्छा हो जाएगा और आजकल ठंडा ठंडा करता पानी पानी करता ढेर कोई के सर्दी खांसी जुकाम हो गलबा तो डॉक्टर के दवाई लिया जाए और साथ में ऐसा कुछ कोनो कोनो नुस्खा ले जैसे कि हरदी दूध या जीते पिया में थोड़ा लीमो गार के डाल दीबा गरम गरम सकब पिए हरदी दूध अच्छा दूधवा गरम करके हरदी जन पीसर हर डाल के मन से बिनाव से करके पास से करके पी लिया या फिर जीते पिया में दो नींबू के दो गुद डाल के चोरी से बिना चीनी के पी लिया ये तो और पौधे विटामिन सी जितना है अच्छा है अभी सर्दी के मौसम कर रहा था चेन्नई से लोग जाने लेका लोग नहीं खुश अफ्रीका के पर चहला डॉक्टर लोग बोले विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ सर्दी खांसी जुकाम से बच्चे कहते हैं जोरोंस खाइए मोदागिन खाइए लीमो खाइए पोम खाइए पोमलिमुस खाइए ये अच्छा है समझदार के इशारा काफ़ी बा अभी मालाद नहीं हो गया है काहे के लिए एग्जाम हो गया अभी आए के बाद एनसी एग्जाम्स फिर एससी एचएससी एग्जाम्स ये खातिर अपन के पोतेजे करिए स्कूल जाते हुए तो अपन छाता अपन रेन कोट अपन साथ ले रही नहीं बोलिए ना मपापू में तो कास्के दौराते मुझसे भी पी सिफोनी नहीं सब जिस नहीं है देखिए माँ बाप लोग इतना पैसा डालता लड़का लोग संगीत लड़का लोग थोड़ा सुनने को लामू फो प्रक्रिया सर जब लेकुल जाते हुए तो अपन साथ में अपन छाता ले लिया इतना जिप्सी में छत्ता एगो साक पासिक में डाल के अपन साक में डाल के एगो रेनकोट ले लिया रेनकोट पहन लिया पासकोल पोलोलो डाल लिया कह के बड़ी ठंडा कर रहता और लड़का लोग फजी के बोने रही 6 बजे निकल जाना घर से जो निकाल दूर जाला स्कूल कॉलेज और ऐसे ठंडा ठंडा कर रहता था ग्लासी चीज़ नहीं पिया है गर्म गर्म चीज़ पिया जा गर्म गर्म खाना खाइए गर्म गर्म पानी गर्म गर्म चाय कॉफ़ी पिया थोड़ा स्वास अच्छा रही और हमने बड़ा आदमी से हमने के जी वह लेका लोग के बताया कि अगर हमने नहीं बोला तक के बड़ी पर लेका लोगों के छापन रेस्पॉन्साबिलिटी ली गई लेका जो इन फोम सैंक एचएससी में चल बा तब तो लोग अपन रेस्पॉन्साबिलिटी ली ऐसा स्कूल जाते हुआ तब फिर के अपन छाता रेनकोट अपन साथ ले जाइए ठीक बा तब सुनब जग लगी तब बाजे बाजे ढोल मंजीरा बहुत ही प्यारा सन गाना है और है गीत मंगली हवन मोहताबाद से बीना कर घरोला कर दुगो बेटा खातिर देविका रामगतिया चंपा रामगतिया और उनके परिवार में शादी बा और कुछ छोकरी शादी कर रहता तब बहुत बहुत बधाई राधा सी बालक बेमनी के साथ जुड़ावन कर बेटा प्रशांत बहू बेटी शिल्पा दामाद और सब सिबालक परिवार के नाम राविश मंदू वैसे अवन कर माता जी पिताजी भाई भौजी और सब मंदू परिवार के नाम तरह के गीतवा पसंद बा बाजे बाजे ढोल मंजीरा आप कैसे ढोल मंजीरा बजाता चल हमने सुनब जा

भोजपुरी दर का कार्यक्रम चकाचक प्रोग्राम चलता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और बुलल जला की दुनिया में जुन होला अच्छा ही होला जैसे जाता जाए दुनिया के और कौन कुआ नहीं सक बजाए ना तैसे ही हंसते गए रहिए मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कबो परेशान है हम तक स्ट्रेस नहीं है भैया पैरा हम बड़ी स्ट्रेस है वतरी छोटा छोटा बात के लिए के पर एक दिन हमारे को मुलाकात हो भारत के गो आचार्य से और इस्कॉन में आर फिनिक्स में तो कर मार्गदर्शन पर जब हम हेली तो विजेताओं हिल गई थी शाकाहारी और बेशक पूजा पाठ योगा रेकी मेडिटेशन ये सब करी रहा पूजा पाठ करी रहा और जब तनाव आवे रहा था सब भगवान के हम हाथ में छोड़ दे रहा हाँ और बेशक कोनो टेंशन नहीं लेके जिंदगी जैसे जाता ओके जाए दिया जब भगवान थोड़ा दुख देवे रहा तो वही वो दुख आके दूर करी और भगवान से बड़ा कोई नहीं बा दुनिया में भगवान ही हमने के जन्म देवेला वही सुख दुख देवेला और जब भी कोनो प्रॉब्लम मेरा तो तू प्रॉब्लम जो है भगवान के हाथ में दरिया जा और भगवान जो है उसका लीला परम्पार बा वो कोनो न कोनो दरवाज़ा तोर खाती ज़रूर खोली कभी कभी ऐसे नहीं को मोड़ आवेला जब तो नहीं सकेला को देसी जान ले तब जाइए भगवान के शरण में बोलिया हे प्रभु हम ऐसे नहीं को मुसीबत में के कौंपो नहीं लगाता समझ में नहीं आवा था कौन सीमा ले अब तक दिखा भगवान थोड़ा को इशारा दे और कोनो न कोनो सीमा जरूर निकली अगर मन में लगन बा भक्ति बा सच्चे हृदय से तू भगवान के पूजा पाठ करते हुआ

योग साधना कर रहे थे, वह भजन कीर्तन कर फजी सान भगवान की याद करे रहा, तो भगवान अपन भक्त के कष्ट में नहीं सकेला देखे, कोनो न कोनो रूप में आके अपन भक्त की मदद जरूर करे रहा। तो भगवान पर भरोसा किया, राधे राधे राधे राधे, हरे कृष्ण अजब तोरे लीला, हाँ प्रभु तोहर लीला अपरंपार। और भगवान जाने रहा कब कौन सी चेहरा करेगी, सही समय में सही काम होला, ना समय से पहले ना समय से बाद, भगवान अगम जानी है, भगवान जाने रहा कब कुछ बा करेगी। तो चला भी गीत सुनब सा, ज्वाला भी जाधन गई ले वन अजब तोरे लीला, भगवान की लीला परम्पार। और एक गीत हमने चलाओ थे इस खासम खास प्रीतम भाई रब के, अशोकर पत्नी ज्योति और बेटी प्रियंका, दामा राविश सिंह, बेटी पूजा, सब भैरव परिवार के नाम। और द वेल से अमन टीना, टीना बुदना कर घरोला कर दुगो बेटी रतन निहाल, गाँव बेच से कर पत्नी करुणा, पापा विजय, सब निहाल परिवार के नाम। प्रवीण बुधन अमन रिजौगी से और माता पिता और सब परिवार के लिए। गाँव फुखो से अमन नीतीश सिटी जोरी और माँ बाप और पत्नी और बेटा और सब सिटी जोरी परिवार के नाम। तो चलो अभी एक साथ सुना जाए गीत अजब तोरे लीला और भगवान की लीला अपरंपार है।

भगवान के बनावल हर एगो चीज जोरी बा खूबसूरत बा पेड़ पक्षी फूल हरियाली स्त्री पुरुष सब कोई जोरी बा सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री अब ढेर कोई सांवर सांवला रंग के हवन से सांवर हवन से तबलन से आयु के ने ढेर कोई नहीं खुशी रही लाखों से हम सांवर हैं अरे भाई कृष्ण भगवान सांवर रहल तो देख रहे कितना कोई कृष्ण भगवान की खुशी रहे अभी फेकवा कृष्ण जन्माष्टमी मनेरी सा कि नहीं और कृष्ण जन्माष्टमी सब कोई नची सक गैरी सा तो कबो नहीं बोलिया कि तू जोरी नहीं हुआ है सब कोई जोरी बा ए तम के जोरी जोरी संगति आलोकन के जोरी जोरी श्रोता लोग अभी की सुना था और ढेर कोई अपन आपके लागलास पे खतरा बोला था ए मुसी मजोरी दो हाँ जी सब कोई जोरी बा भगवान जन बने लग बा तो कर में सुंदरता कूट कूट के दे लग बा कबो भी नहीं सोचा कि कोनो व्यक्ति बोल दे लग कि कबो कबो कोनो व्यक्ति बोल दे वेला आप गीता दा लागलास था वो लोग के उनके बात पर ध्यान नहीं दिया बोले दा ओकर बुद्धि हो सिवा पर हम तो सोची लाए जब हम दुनिया में आने से तो भगवान भगवान के बनावल हर एक चीज जोरी बा एकर चुंटी से लेके एकर लिलीफों तक पेड़ पक्षी से लेके इंसान ले सब कोई जोरी बा है भगवान देखा इंसान बने लगता है पुरुष बने लग सुंदर सुंदर स्त्री बने लग फिर लड़का लोग बने लग पुरुष से दुनिया में आल फिर रचना होल लड़का लोग परिवार लोग तब भगवान के हर एगो चीज बना हुआ जोरी बा और बोले ले सके आगे के जमाने में परी रहल ते परी बड़ी जोरी रहता है और मॉरिशस में भी आजकल जोरी जोरी परी बा जितना परी लोग हमने की सुनता परी का मतलब खूबसूरत महिला लोग जितना कोई सुनता छोकरी लोग महिला लोग अगला गीत सब जोरी जोरी छोकरी जोरी जोरी महिला खातिर सुंदर परी आहा तो लोगों खातिर हो सब कोई खातिर गीत चलाते हैं सुंदर परी गिरीश रूपचंद गीतवा गैले हवन बहुत प्यार से और गीत चली मुकेश और सूरज गंगा खातिर सत्यम सनु शिवरतन परिवार मिशन क्रॉस रोड डालमाची के हमने के भोजपुरी के बहुत शौकीन हवन रविराज सिन्हा बिचुक का गीत और खातिर तोहर पत्नी स्वयं प्रभा तोहर मित्र प्रत्यक्ष और सब परिवार के नाम और हई गीत चली नील की ओर से कर पत्नी और कर सब परिवार के नाम माया काशी है गीत तोहर खातिर तोहर पति तोहर बेटा तोहर पतु और सब काशी परिवार के नाम और है गीत चली महेश परिवार खातिर रिस्कारी रहेलन और रिवियरी जोंगी के सब सीमाद्री परिवार के नाम और रिवियरी जोंगी एसएसएस और सुयाक एसएसएस के जितना टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अभी हमने सुना था रात के है गीत तो लोग के नाम भी सुंदर परी

जिंदगी चार दिन की है और कर बात का जी नहीं कुछ बा कुछ नहीं. विलियम शेक्सपियर लगभग लाइफ इज ए स्टेज मैन इज एन एक्टर ही परफॉर्म्स हिज रोल एंड गोज अवे वन डे. सच्चे के एगो रंगमंच है यहाँ पर अपन अपन रोल निभा रहे हैं. सर देखा हमने के कितना रोल बा. एगो व्यक्ति कबो हम एगो पिताजी हैं, एगो पति हैं, बेटा है, राज्यों में एगो अनिमाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही रहा सर. पर एगो व्यक्ति की ढेर भूमिका रहेगा और हमने के चाह सब भूमिका निभाई के अब अच्छी तरह से सौ पूछा नहीं सकब सर भूमिका निभाई. पर कातावान जिस पूछा ने अगर अच्छी तरह से भूमिका निभाई सर तो हमने के जीवन सफल हो जा रहा हो कि नहीं. और बेशक तू भी अपन रोल अच्छी तरह से निभाई. अगर एगो माँ हुआ, बेटी हुआ, बहू हुआ या बेटा हुआ, पति हुआ, दामाद हुआ तो अपन रोल अच्छी तरह से निभाइया हो कि नहीं. चला इसे में अगला गीत सुनब जा कुणाल हीरा के आवाज़ में जोली चोकली से प्यार करी रहा. और है गीत तो एक गीत खासम खास जैनब की ओर से सब मोसाई परिवार के नाम सब पोले परिवार के लिए. पोले परिवार शेमिकन मोसाई परिवार फिनिक्स अंजुनन को एक गीत और माता जी तो पति खतेर रोजी द हाईलैंड से आफे हवन लाविनिया सैम्पियर से और फातमा हवन न्यू ग्रोव से बहुत बहुत प्यार के साथ धर्म के साथ देवत हुआ. और इंटरनेट के जरिए अभी सुनीता के साथ देवत सुनीता हवन फ्रांस से बोलतवन प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम चगा चक बा. और बोलतवन की हम शुरुआत से तो प्रोग्राम सुनते हैं शाम के 3 बजे से लोकल टाइम है मॉरिशस के लोकल टाइम वहाँ पर 3 बजे रहता तब से सुनते हैं. और तो प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगेगा यहाँ फ्रांस में ढेर कोई थोड़ा पसंद करे प्रताप जी थैंक यू सो मच. और हई गीतवा तोहर खातिर थोड़ा सा परिवार के लिए और जितना कोई भी बेकरी में काम करता अस्पताल में क्लिनिक में मिथ्यू सर्विसेज में फायर सर्विसेज में जितना भी विभाग काम करता कॉल सेंटर में जितना कोई भी काम करता अभी रात के हमने के सुनते वन तब बंकुआज सस्ती बने वाली ड्राइवर दो सवन पसा जिले के जालन पसा जिले के आवे नंजा. और ढेर कोई भी नाइट शिफ्ट करते वन ढेर कोई नाइट शिफ्ट कर दी लगभग घर लौटते वन सर गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी पियाते वन सर तो हो जाए गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ साथ ही प्यारा सन गाना जो

बोली छोकरी से प्यार ऐसे संग संग आप से शर्मा के नीचे है ना ओके वन टू थ्री अली संग संग आप से छोली छोकरी से प्यार करी ला हे हे

ओकरे से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला ओके कैसे समझा बोके बताए दे हमको से प्यार करीला ऐसे गाती रहिए नचती रहिए और हइए गीतवा के संगे भोजपुरी तक का प्रोग्राम समाप्त होता है कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बजे हो रहा 11 बजे सुन बस सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से का फजर के 5 बजे ले नॉनस्टॉप फिल्मी तारा ने हमने के तौरों की मुलाकात यहाँ तक रहा सांझ के 3 बजे से अभी रात के 11 बजे हमने के साथ दे रहा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर सब कोई के शुक्रिया तौरों के फोन कॉल्स और एसएमएस खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमने के तौरों की मुलाकात हुई अब मंगल के रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का तब तक हमने के इजाजत दे अजय प्रताप सिंह से तालुके और से सब संगत यालो के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ फिर से हाजिर हो गई है हम आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, हम हैं गिनिशा और बड़े प्यार से आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस आपका साथ देने के लिए इन पुराने ही नगमों को लेकर। तो आप सभी लोगों का गिनिशा का प्रणाम, गुड इवनिंग और नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, एकदम तैयार हो जाइए हमारा हम सफ़र बनने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

वैसे तो देखा जाए आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट फास्ट है, लेकिन दिल को कभी कभी स्लो होना भी जरूरी है दोस्त। तो चलिए कुछ पल रुकते हैं, पुराने गीतों को सुनते हैं और यादों में खो जाते हैं। ये है आपका अपना सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

कुछ आवाजें कभी पुरानी नहीं होती हैं। बिल्कुल जी, कुछ आवाजें जो है ना कभी पुरानी नहीं होती हैं। और मोहम्मद रफी जी, किशोर दाल, लता मंगेशकर और आशा भोसले और ऐसे ही अनेक लेजेंड्स की आवाज आज भी दिल को छू जाते हैं। उन्हीं गोल्डन मेमोरीज के साथ सुनहरे पल में हम आपका साथ निभाने आ गए हैं। तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त जो अभी काम पे हैं, अगर आप काम पे हो तो बोंको हाश टू यू। और ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

क्या मुझे विश्वास है कि आपके पास भी कोई ऐसा गाना है जो सुनते ही किसी खास इंसान की याद आ जाती है? बिल्कुल जी, शायद आज वो गाना यहाँ बज जाए आपके सुनहरे पल में, क्योंकि सुनहरे पल में हर मेलोडी के पीछे छुपी है एक खूबसूरत सी याद, और वो है आपकी याद। आपकी यादों को हम फिर से ताज़ा करने आ गए हैं अगले नगमे के साथ। तो ये रहा खासकर आपके नाम और आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

वर्ल्ड ऑसो यादों का भी एक फेवरेट साउंडट्रैक होता है और हमारा वो साउंडट्रैक है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन गाने तो तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल जर्नी के लिए हमेशा रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जहां हर गाना आपको कुछ याद दिलाएगा सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर और क्या चाहिए

खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते वर्ल्ड ऑफ इस खूबसूरत से शो का अंत तक हम पहुंच गए हैं, हमें पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं आपने दिल से एंजॉय किया। तो चलिए जी, हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर और गिनिशा का ढेर सारा प्यार सभी के नाम।

0: CBC Radio 24 hours a day.
1: चलन से ना चाल से प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से.

0: सी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: गुड मॉर्निंग मामी, गुड मॉर्निंग।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो